जावेद अख्तर के बोल, ए आर रहमान का म्यूजिक, का उदित नारायण की आवाज़, फिल्म का नाम था स्वदेश और ये था राग खमज। चलिए अब आपको गलती से मैंने आउट ऑफ ऑर्डर खमज सुना दिया, पर किंग ऑफ राग केदार की बारी आ गई है। और क्या कहा जा सकता है कि एक नींद है जो रात भर नहीं आती है। साजन जब चले जाते हैं तब ऐसा ही होता है कि एक नींद है जो रात भर नहीं आती है, एक नसीब है जो न जाने कब से सो रहा है। बंदिश बैंडिट्स में ये गीत आया था, शंकर एहसान लॉय ए आर रहमान की टक्कर ले रहे हैं इस सीरीज में, और आपको ज़रूर ये गीत पसंद आएगा, सजन बिन आए ना निंदिया।

भाई बंदिश बैंडिट्स के गीतों ने तो बैंडिट्स की तरह मेरा दिल ही चुरा लिया। और इस बार जावेद अली, अरमान मलिक और जुनैदा गांधी ने क्या मज़ेदार ट्रिपल जुगल बनने की है। तो देखिए, खमाज और केदार की बारी ख़त्म हुई, अब आई राग किरवानी की बारी, जो कि कई तरह से राग पीलू की तरह है। और इस बार दो तीन फरमाइशें भी आई हुई हैं। पहली फरमाइश में गुलजार साहब क्या बोल लिखते हैं कि तू घटा है तो फिर क्यों बरसती नहीं, उड़ती रहती तू पंछियों की तरह, आ मेरे आशियाने में आ। जी हाँ दोस्तों, फिल्म फिजा का ये गीत, इसकी फरमाइश की है शीला मेहता ने। राग किरवानी में पहुंच चुके हैं हम, और इस बार सोनू निगम और अलका याग्निक आपको एंटरटेन कर रहे हैं।

तो दोस्तों, किरवानी ऐसा राग है जो कि भटखंडे साहब की थाटों में फिट नहीं होता है और बड़ा ही अनयूजुअल और बड़ा ही खूबसूरत राग है। जैसे कि आपने सुना शीला के मेहता की फरमाइश में, अगली फरमाइश रीपा मेहता की है और गज़ल है, और बड़ी ही खूबसूरत गज़ल है कि आपके दम से तो दुनिया का भरम है कायम, आपके दम से तो दुनिया का भरम है कायम, आप जब हैं तो जमाने की जरूरत क्या है, बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है, हम खफा कब थे मनाने की जरूरत क्या है। लीजिए सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में रिपा मेहता की फरमाइश, ये खूबसूरत गजल बेसबब बात।

जी हाँ दोस्तों, हम खफा कब थे, मनाने की ज़रूरत क्या है। तो देखिए, आपको मैंने दो गाने सुना दिए किरानी में, और अब चलते हैं राग ललित की तरफ। जी हाँ, राग ललित का ये गीत फिल्म इश्किया से है, और कहा जाता है कि धुआं धुआं जला था दिल, धीमे धीमे गुबार उठा, राग के उस ढेर में बिखरा हुआ एक ख्वाब मिला। गर धुआं उठा है तो आग भी लग गई होगी, यूं तो परवाने को शौक नहीं खाक हो जाने का। लीजिए सुनिए गुलजार साहब के बोल और विशाल भारद्वाज का म्यूजिक, रेखा भारद्वाज की आवाज़। फिल्म का नाम था इश्किया, बड़ी धीरे जली।

तो दोस्तों, ये तो था राग ललित में एक खूबसूरत कॉम्पोजिशन। सवेरे सवेरे राग ललित बजाया जाता है, बड़ा ही सीरीन राग है, डिवोशनल राग है, जैसे कि आपने इस गीत से कंक्लूड कर लिया होगा। चलिए राग ललित से चलते हैं राग मारू बिहाग की तरफ, जो कि राग बिहाग का ही एक वेरिएंट है। और इस बार ये गीत जो है, इसकी कॉम्पोजिशन की थी IIM कैलकटा के ग्रेजुएट संजीव कोहली साहब ने, जिनके वालिद मदन मोहन साहब कुछ नोट्स इस गाने के लिख के गए थे। जावेद अख्तर साहब ने इसके बोल लिखे और अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ें जब किसी भी गीत में आ जाती हैं तो वो गीत उस गीत में तो चार चांद लग जाते हैं। फिल्म का नाम था वीर ज़ारा, और जी हाँ, आपको ज़रूर ये पसंद आएगा, आया तेरे दर पे दीवाना।

तो दोस्तों, ये तो थी अहमद और मोहम्मद हुसैन की कवाली। चलिए आगे बढ़ते हैं सारंग फैमिली ऑफ राग पे, पर अभी एम पे ही टिके हैं क्योंकि मैं आपको दो गीत सुनाऊंगा मधुमत सारंग में। सारंग फैमिली में बहुत सारे राग हैं, धूलिया सारंग, गौड़ सारंग, हिंडोली सारंग, सामंत सारंग, सरस्वती सारंग, शुद्ध सारंग, पर हम लोग आज फोकस करेंगे केवल मध्य मध यानी कि मधुमत सारंग पे। और ये पहला नगमा जो है, यह है फिल्म प्रेम रतन धन पायो से। लीजिए सुनिए।

जैसे कि मैंने आपको कहा, राग मदमल सारंग में आपको दो गाने सुनाऊंगा कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थर आता हूँ। स्वानंद किरकिरे के बोल और इंडियन ओशन का म्यूजिक, फिल्म का नाम था मसान।

0: अब तो हम फ्रेंड हो गए हैं ना।
1: तो दोस्तों ये तो थे इंडियन ओशन और कर रहे थे आपको अच्छी तरह से रॉक। अगले मोड़ पर एक और रॉकिंग गीत है जिसकी फरमाइश की है सुधीर मटानी साहब में। अभी हमारी रेल जो है वो मधमड सारंग पे ही अटकी हुई है, कहीं नहीं जा रही है, तो पुल से आपको हटने की जरूरत नहीं है। खड़े थे छत पर आ गए सीढ़ी पे, खड़े थे छत पर आ गए सीढ़ी पे, पीते थे सिगरेट और आ गए बीड़ी पे। तो लीजिए सुनिए बीड़ी जलाई ले।
2: वॉच माई बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स ऑनलाइन
3: देखिए सिर्फ इरोस।

साहब और विशाल भारद्वाज से आगे बढ़ते हैं हम। इस बार बारी है निरंजन अयंगर के बोलों की और शंकर एहसान लॉय के म्यूज़िक की, और राग फाइनली हम बदल रहे हैं। जी हाँ, मदमर्द सारंग से हम जा रहे हैं मियाँ की मल्हार की तरफ। मल्हार में भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं, जैसे देश मल्हार, गौड़ मल्हार, धूलिया मल्हार। हम रहेंगे मियाँ की मल्हार के साथ, और इस बार बारी है एक खूबसूरत नगमे की कि तीर खाके जो देखा तीर गाह की तरफ, तीर खाके जो देखा तीर गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। लीजिए सुनिए फिल्म दी डे का ये गीत, मुर्शिद खेले होली।

तो दोस्तों ये तो हो गया मियाँ की मंधार और मुनव्वर मासूम जावेद अली और शंकर महादेवन की आवाज़ें, बड़ी खूबसूरत आवाज़ें हैं। पर अगले मोड़ पर पहाड़ी आदमी हूँ, राग पहाड़ी नहीं सुनाया तो आप भी कहेंगे शाम कैसे कंप्लीट करोगे भाई, कि ज़रूरी तो नहीं है कि नज़दीकियों में प्यार हो, ज़रूरी तो नहीं है कि नज़दीकियों में प्यार हो, फासलों में भी इश्क की बुलंदियाँ देखी हैं हमने। लीजिए सुनिए राहत फतेह अली खां की आवाज़, फिल्म का नाम था पाप, लागी तुमसे मन की लगन, राग पहाड़ी।

0: ध्यान का वक्त हो गया है, मैं जा रही हूँ।
1: दिन में कितनी बार ध्यान करती हो?
0: अभी तो 3 बार करती हूँ, जब गुंपा चली जाऊंगी तब 6 बार करूंगी।
1: गुंपा यानी मठ? कब जाओगी गुंपा?
0: तुम्हारे जाते ही चली जाऊंगी।

तो दोस्तों आप सुन रहे हैं भारत FM, बजेगा भारत, झूमेगा भारत। आज की शाम रागों के नाम थी। हमने शाम शुरू की राग अहिर भैरव से, फिर भैरवी, फिर बसंत, फिर भीम पलासी, फिर भूपाली और भिन्ना सदज, फिर वृंदावनी, धानी, गारा, झिंझोटी, खमज, केदार, कीरावनी और राग ललित, राग मरुविहाग, मदमद सारंग के तीन गाने सुनाए, राग पहाड़ी। अब आ गए हैं आखिरी पायदान पर और यहाँ पे है एक राग जो कि मुझे नहीं मालूम कौन सा राग है, और ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। मेरे ख्याल से नट भैरवी हो सकता है, पर अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, गाना ही कुछ ऐसा है। फिल्म का नाम था इशक जादे और अमित त्रिवेदी का म्यूज़िक, कौसर मुनीर का के लिरिक्स बहुत खूबसूरती से वो लिखती हैं, और शलमली खोलगड़े की आवाज़। और अगर आपको राग पहचान में आता है तो ज़रूर मुझे बताइए, वरना परेशान मत होइए। हैव अ वंडरफुल नाइट एंड ट्यून इन बैक एट 7 PM ऑन फ्राइडे एंड संडे इवनिंग। This is Amitabh Raturi signing off from Farmaish. Have a wonderful night. Enjoy this song.

0: 야.
1: 조야. 조야. अरे वही तो बोला ना, जोया जोया।
0: हाँ तुमने एकदम करेक्ट बोला, जोया जोया।

0: दिस इज भारत एफएम।
1: बचेगा भारत, झूमेगा भारत।
2: हेलो हेलो हेलो हम सफर, नमस्ते, सत श्री अकाल, किंचो वनकम सलाम। हम सफर शो के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपकी जिंदगी के बिजी सफर को म्यूजिकल बनाने के लिए आ गई हूँ मैं, यानी कि आपकी प्यारी सी होस्ट हम सफर और हम राही RJD। आज के एपिसोड में हम बातें करेंगे हमारी और तुम्हारी, मेरी और आपकी, यानी कि आज का टॉपिक होगा हम और तुम। मगर इससे पहले कि हम सब हम तुम और तुम हम की तू तू मैं हम तुम मैं फंस जाएं, आप फटाफट एक कप गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाइए, अपने डिवाइस का वॉल्यूम बढ़ाइए और बन जाइए मेरे हम सफ़र।

हमसफर्स आज के इस शो पर हम और तुम की बातें करेंगे और बॉलीवुड के कुछ बहुत ही खूबसूरत हम तुम वाले गाने भी सुनेंगे। आई होप मैं आप सब की पसंद के हम तुम वाले गाने जरूर कैप्चर करूंगी और आपके लिए प्ले भी करूंगी। तो तैयार हो जाइए एक और मस्त जबरदस्त सफर के लिए मेरे यानी आरजे डी के साथ भारत FM पर। तो आज के हमारे सफर का टॉपिक है हम और तुम।

सच हम सफर्स, मैं तो आपको बता ही नहीं सकती कि मैं आज और हर हफ्ते आपसे मिलकर कितनी खुश होती हूँ। दिस वन आवर इज ऑलवेज द हाईलाइट ऑफ माई वीक। तो चलिए इस हम तुम की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कि जब हमारी जिंदगी में नए प्यार की एंट्री होती है तो कैसे हम सिर्फ हम से हम तुम बन जाते हैं।

सुन रहे हैं भारत FM, बजेगा भारत, झूमेगा भारत, और मैं हूँ हम तुम के गहरे प्यार में बहती हुई आपकी RJD। अच्छा हम सफर्स, इस हम और तुम की बातों में मेरी फेवरेट बात तो यही है कि अलग अलग हम और अलग अलग तुम बहुत ही लोनली और कमजोर से लगते हैं, मगर अगर हम और तुम कभी मिल जाएं तो फिर पांच उंगलियों से एक स्ट्रॉन्ग मुट्ठी वाली बात बन जाती है।

वेलकम बैक आप सब लिसनर्स, आज मेरे हम सफ़र बनकर मेरे और इस शो के साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। अच्छा हम सफर, चलिए अब हम थोड़ी देर के लिए एक कॉन्ट्रोवर्शियल सा टॉपिक लेते हैं। हम बात करते हैं लव एट फर्स्ट साइट की। आपको क्या लगता है कि लव एट फर्स्ट साइट होता है या नहीं? इस मामले में मैं थोड़ी सी सिनिकल हूँ, क्योंकि मुझको तो लगता है कि पहली बार किसी को देखकर इमीडिएट अट्रैक्शन या फिर केमिस्ट्री तो हो सकती है, मगर पहली नज़र में किसी से जिंदगी भर का वो गहरा प्यार ऐसा हो जाना थोड़ा इम्प्रॉबेबल सा लगता है।

वेलकम बैक। आप हैं मेरे साथ यानी आपकी हम सफर आरजे डी के साथ भारत एफएम पर। भारत एफएम साथ है तो लाइफ में कुछ बात है। अच्छा, हम सफर हिंदी मूवीज में ये जन्म जन्म के रिश्तों को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। 7 जन्मों के लिए अगर सेम पार्टनर हो तो थोड़ा बोरिंग सा नहीं हो जाएगा क्या? अच्छा, मजाक तो अपनी जगह है, मगर मूवीज के हम तुम रोमांटिक लवर्स जब युग युग के मिलन की बातें गाने गाकर करते हैं तो मुझको बहुत अच्छा लगता है। ठीक वैसे जैसे कि आप सब हम सफर्स और मैं हर हफ्ते इस शो पर मिलते हैं अपने प्यार और गानों के माध्यम से।

वेलकम बैक। अच्छा हमसफर्स, हम तुम की इस म्यूजिकल शाम में चार चांद लगाते हैं एक क्लासिक गाने से, जो कि नए नए प्यार का एक बहुत ही अहम सवाल उठाता है। और वो सवाल ये है कि अगर हम और तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, तब क्या आलम होगा।

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं भारत FM। अगर आप अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो एडवर्टाइज कीजिए भारत FM पर। यू कैन ईमेल अस एट info@bharatfm.com। अपनी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में आप भारत FM को अपना पार्टनर जरूर बनाइए।
1: दिस इज भारत FM।
2: बजेगा भारत, झूमेगा भारत।
0: अच्छा हम सफर्स, हमने आज के इस एपिसोड में अब तक सिर्फ हम तुम के प्यार और मिलन की बातें ही की हैं, मगर अब चलिए एक नया मोड़ लेते हैं, क्योंकि हम तुम के इस सफर में इट्स नॉट ऑलवेज फ्लावर्स एंड रेनबोज। प्यार में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो या फिर किसी भी वजह से दूरियां आते देर नहीं लगती है। किसी शायर ने कहा है ना, मुद्दत से दूर थे हम तुम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। मुद्दत से दूर थे हम तुम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। सागर से गहरा लगा आपका प्यार, तैरना तो आता था मगर डूबना अच्छा लगा।

अच्छा हम सफर्स, अब हम तुम के बीच दूरियों की बात चली ही है तो कुछ देर हम उस जुदाई के सागर में ही गोते लगाते हैं। अच्छा नए नए प्यार में तो जुदाई का तस्वीर करना भी नामुमकिन है, मगर प्यार की एक सच्चाई ये भी तो है कि हर प्यार को और हर प्रेमी को अपना मुकाम नहीं मिलता है। असल जिंदगी में तो अक्सर प्रेमियों को जुदाई और सेपरेशन ही तो हाथ लगती है।

वेलकम बैक। अच्छा, हमसफर, इस प्यार का एक अहम सवाल और है जिसके बारे में मैं अक्सर सोचती हूँ, और वो है, इज इट बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट और नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल। प्यार करके जो जुदाई का गम है वो इतना पेनफुल होता है कि कभी कभी इंसान को लगता है कि वो हमारी ज़िंदगी में आता ही नहीं तो अच्छा था। मगर मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर ज़िंदगी में प्यार की खुशियाँ और प्यार का गम नहीं महसूस किया तो फिर हमने ज़िंदगी को जिया ही नहीं।

0: Akshat Collections is all about uplifting, inspiring and elevating women. We carry gorgeous Indian clothing collections that spread joy and aren't the usual run-of-the-mill stuff. We are based in Mason, Ohio. Please check our Facebook page, Shud Collections.
1: Welcome back. आपकी जिंदगी के सफर की सफरिंग को थोड़ा कम करने के लिए आपके साथ हूँ मैं RJD और आप सुन रहे हैं भारत FM पर आपका और मेरा फेवरेट शो हम सफर। अच्छा, हम सफर इस प्यार भी एक अजीब चीज है ना, जब हाइज देती है तो इंसान को सातवें आसमान तक पहुंचा देती है, मगर जब लोज देती है तो इतना नीचे गिरा देती है कि वापस ऊपर उठना मुश्किल हो जाता है। मगर इतनी एक्सट्रीम इमोशन होते हुए भी प्रेमी लोग जो होते हैं वो निडर बेबाक होकर इस आग के दरिया में कूद पड़ते हैं।

वेलकम बैक। मैं हूं आपकी आरजे डी और आप सुन रहे हैं भारत एफएम। बजेगा भारत, झूमेगा भारत। मेरा काम है आपके और मेरे जिंदगी के स्ट्रेसफुल सफर को आसान और म्यूजिकल बनाना, और आपका काम है मेरे म्यूजिकल हम सफर बनकर मेरे साथ चलते रहना। और हाँ, अपने गानों की फरमाइशें मुझे जरूर भेजते रहिए, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि मुझको आपकी फरमाइशों का हमेशा इंतजार रहता है। तो इस हफ्ते मैं आपको सुना रही हूँ हमसफ़र चंदन की रिक्वेस्ट। हमारे बहुत ही म्यूजिकल और नॉलेजेबल हमसफ़र चंदन आज सुनना चाह रहे हैं एक बिल्कुल क्लासिक गाना जो आज भी बिल्कुल फ्रेश लगता है। चंदन, आपकी ये रिक्वेस्ट मेरे सर आँखों पर। एंजॉय।

हम और तुम की बातों में डूबकर पता ही नहीं चला कि ये इतना खूबसूरत सफर कैसे निकल गया। मगर आपका और मेरा आज का साथ बस इतना ही। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और एक नए टॉपिक पर खूब सारी गपशप करेंगे। बस आप अपने पसंदीदा गानों की और टॉपिक्स की फरमाइशें मुझे भेजते रहिए info@bharatfm.com पर, या फिर मुझे टेक्स्ट कीजिए 5134885070 पर। मैं आज का शो एंड कर रही हूँ मेरे एक बहुत ही पसंदीदा गाने से, जो हमेशा मेरे दिल के तार छेड़ देता है। इट जस्ट टचेस अ वेरी सॉफ्ट डार्क एंड डीप कॉर्नर ऑफ माई हार्ट। आई होप यू लाइक इट टू। मैं हूँ आपकी RJD और आज के लिए गुड बाय। अपनी जिंदगी में हम तुम के प्यार को बढ़ाते रहिए और हर हफ्ते भारत FM पर मेरे हम सफर भी बने रहिए।

0: दिस इज भारत FM।
1: बजेगा भारत, झूमेगा भारत। बजेगा भारत, झूमेगा भारत।
2: दिस इज भारत FM।
3: बजेगा भारत, झूमेगा भारत।

0: ये है भारत FM।
1: बजेगा भारत, झूमेगा भारत।
2: डियर लिसनर्स, द ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स ऑन भारत FM आर स्पॉन्सर्ड बाय अमिताभ रतूरी, अ कंपनी यू कैन रिलाई ऑन टू स्ट्रेटजाइज, बिल्ड, इंटीग्रेट एंड मैनेज। लाइक हिज नेमसेक अमिताभ, he also believes that music is the food of love. Some of his best moments in a day after work is the Bharat FM studio and his show Farmaish. Explore the bharatfm.com archives for his extensive body of work, or you can reach him at 513-488-5070. Hey, hey!

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका भारत FM के ये शाम मस्तानी प्रोग्राम में, और मैं हूँ आपकी संगिनी संजना इस संगीतमय यात्रा में। आज प्रस्तुत कर रही हूँ नगमे नए पुराने राजा रानी के। आप समझ ही गए होंगे, फिल्में जो राजा रानी की कहानियों पर आधारित हैं, या हिंदी फिल्म के वो गीत जिनमें राजा रानी राजकुमारी कुंवर जी ऐसे शब्द पाए जाते हैं। तो कार्यक्रम शुरुआत करने से पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ आप सबका, जिन्होंने अपने फेसबुक, अपने रिक्वेस्ट फेसबुक और टेक्स्ट द्वारा हमें भेजे, और डबल धन्यवाद आज शाम हमारे इस महफिल में शामिल होने के लिए। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट यू द ओपनर्स ऑफ दिस इवनिंग दैट एपिटोमाइज रॉयल रोमांस। सो आर फर्स्ट नंबर फॉर द इवनिंग इज फ्रॉम अ मूवी कॉल्ड अनारकली।

होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

चकाचक फिर लो पान चबा। आहा।

0: ये है भारत FM।
1: बजेगा भारत झूमेगा भारत।
2: जी हाँ दोस्तों, बजेगा भारत झूमेगा भारत, गाएगा भारत गुनगुनाएगा भारत। दोस्तों, गाते गुनगुनाते शो में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए सावन पर बेस्ड गाने लेकर आए हैं, और अगर शो की शुरुआत एक बहुत ही शानदार गीत या भजन के साथ हो जाए तो उसका कुछ जो है और ही माहौल बनेगा। तो हम आपको कुछ कविता शायरी सुनाते हुए भजन की तरफ ले चलते हैं, फिर आपके साथ करते हैं बातचीत। आप जैसे जैसे ज्वाइन करते जाएं, अपने मैसेजेस हमें ज़रूर कीजिए, जिससे हमको आपके साथ बात करने में आसानी हो। और चलिए आपको ले चलता हूँ सावन के सुहाने सफ़र पे गाते गुनगुनाते गीत के प्रोग्राम में। तो सावन पर एक छोटी सी कविता की कुछ पंक्तियाँ हैं। आया शिव का सावन, कर देता मन पावन, करो महादेव की भक्ति, मिलेगी समस्याओं से मुक्ति। तो इसी बात पर जो भजन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसकी कुछ पंक्तियाँ मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, और आप उसको अगर आपने सुना है तो पहचान के बताइए कौन से भजन की यहाँ पर बात की जा रही है।

दोस्तों, हरिहरन साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में आपने ये शिव भजन सुना। ये था डॉली अरोरा, संजीव अरोरा और मास्टर अर्जुन एंड मलिका जी की फरमाइश पर गाज़ियाबाद से। और जिन श्रोताओं ने हमें अब तक ज्वाइन करके मैसेजेस करने शुरू कर दिए हैं, आइए उनके साथ बातचीत शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं शेखर अग्निहोत्री, डॉक्टर नीलम अग्निहोत्री फ्रॉम शाहजहाँपुर, और इनके साथ हमारे शो में जुड़े हैं श्रेष्ठ पाठक, अर्चना पाठक, लिटिल देवीना, संजय गुप्ता, दीपेश पाठक, पंकज सक्सेना, और इनके साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं पवन कुमार सिंह साहब, अभिजीत चटर्जी, सीमा चटर्जी और ज्योति कांटी फ्रॉम लखनऊ, दीपक महेश्वरी फ्रॉम पुणे, वीना द्विवेदी मैम फ्रॉम शाहजहाँपुर, सुरेश सप्रा जी ट्रैवल पे हैं या पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पर, आप बताइए। सुरेश भाई, आप ट्रैवल पर थे ऐसा मुझे जानकारी है। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में दोस्तों। और हमारे साथ जुड़े हैं सुप्रिया गुप्ता फ्रॉम लखनऊ, और सही जवाब मैं बताता हूँ किन के आए हमारे पास। और इस बीच हमारे साथ शिखर दीक्षित जुड़े हैं शाहजहाँपुर से। चलिए दोस्तों, और हमारे साथ बीके मिश्रा जी भी जुड़े हैं शाहजहाँपुर से, जहाँ तक मुझे याद है उनकी लोकेशन। तो सही जवाब देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके नाम मैं शेयर करने जा रहा हूँ जिनके सही जवाब हमारे पास आए हैं। पवन कुमार सिंह फ्रॉम न्यू दिल्ली, और इनके साथ साथ सुप्रिया गुप्ता, संजय गुप्ता, और संजीव अरोरा, डॉली अरोरा ऑफ कोर्स, इन्हीं की फरमाइश पर आपने ये गाना सुना, भजन सुना। बहुत बहुत बधाइयाँ, थैंक यू फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। चलिए आपको ले चलता हूँ दोस्तों अब अगले गीतों की तरफ। और अभिजीत भाई, आज आप शाहजहाँपुर से हैं, और चलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ट्रैवल पर होने के बावजूद भी हमारे प्रोग्राम में जुड़ते हैं और उसकी शोभा बढ़ाते हैं। चलिए ले चलते हैं आपको अब उस गीत की तरफ जिसका मैंने थोड़ा वेट किया। मैंने सोचा पहले हमारे साथ जुड़ जाएं वो श्रोता, तब ये गीत मैं लेकर आऊँ आपके लिए। तो वक्त आ गया है, और आइए चलिए शेखर अग्निहोत्री साहब को उनके जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए ये गाना प्ले करने जा रहा हूँ मैं। और शेखर साहब के साथ साथ डॉक्टर नीलम अग्निहोत्री, विकास मौर्य हमारे साथ जुड़ते हैं इंडियाना से, US, और विकास मौर्य जी भी अपनी शुभकामनाएं इन तक पहुंचा रहे हैं शेखर भाई के लिए। पवन कुमार सिंह साहब के साथ दिल्ली से, शालिनी सिंह जी फ्रॉम बदायूं, एंड सुरेश सप्रा जी जो कि जलंधर से शाहजहाँपुर की तरफ रवाना हुए थे, शायद अभी भी ट्रैवल पे हैं मुझे लगता है। चलिए आइए सुनवाते हैं आपको इसी बात पर ये खूबसूरत गीत।

दोस्तों, ये खूबसूरत गीत आपने सुना शिखर अग्निहोत्री साहब के साथ साथ हमारे तमाम उनके चाहने वालों ने डेडिकेट किया था ये सॉन्ग उनके लिए, और ऐसा लगता है उन्हें बहुत पसंद आया ये खूबसूरत फरमाइशी गीत। तो दोस्तों, चलिए आपको ले चलते हैं अगले फरमाइशी गीतों की तरफ, और बिना किसी विलंब के बृष्टि अगर होची तो फिर उसकी आवाज़ भी सुनाई देती है तपुर तपुर। तो मैं आपको ले चलता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत फरमाइशी गीत की तरफ, जो कि वीना द्विवेदी मैम ने भेजी है शाहजहाँपुर से। आइए सुनते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत गीत है, और इसमें आप सुनेंगे यीशु दास साहब की आवाज़। और पहले गाना सुनिए, फिर आपसे बातचीत करते हैं। इस गाने के बारे में आपने अगर ये पहले सुना है तो हमें बताइए। वीना रानी द्विवेदी मैम के साथ साथ यही फरमाइश है शेफाली श्रीवास्तव की भी, जो कि हमें ज्वाइन करती हैं रायबरेली से। तो आइए पहले सुनते हैं पहली फिल्म से ये सॉन्ग बृष्टि पड़े तापुर तुपर। अगर प्रोनंसिएशन में कुछ त्रुटि है तो अभिजीत भाई माफ़ कीजिएगा और करेक्शन कीजिएगा।

क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत फरमाइशी नगमा था वीना द्विवेदी मैम और शेफाली श्रीवास्तव जी की फरमाइश पर आपने ये गाना सुना। और वृष्टि बंगाली वर्ड है दोस्तों, माने इसका मतलब है रेन, बारिश, आप जान ही गए होंगे। बहुत ही आसान है इसको समझना। बात यह कि ये रविंद्र जैन साहब का कंपोज़ किया हुआ था ये सॉन्ग आपने सुना, और इसमें जो डिटेल मुझे नज़र आ रही है मैं उसको शेयर नहीं करने जा रहा हूँ। इसमें हेमलता जी की आवाज़ सुनी आपने, और आप ये बताइए मेल वॉइस किसकी थी, जो मैंने पहले आपको बताया था उनकी थी या किसी और की थी, ये आप मुझे बताइए। क्योंकि जो डिटेल मुझे दिख रही है अब वो सेम नहीं है जो मैंने बताया था। जनरली आपने देखा होगा अमोल पालेकर साहब के पीछे येसुदास साहब की आवाज़ बहुत सूट करती थी, तो डिड आई असूम इट और वॉज इट समथिंग एल्स। वृष्टि, अगर उसमें वी का साउंड आप पाते हैं बोलते हुए अपने आप को, तो वो संस्कृत वर्ड है। अभिजीत चटर्जी साहब क्लैरिफाई करते हुए इसमें हमें बता रहे हैं। और अगर बृष्टि बोल दिया बृष्टि, तो वो बंगाली उसका जो है वर्शन हो जाएगा। तो क्या बात है, बहुत ही मधुर गीत हमने सुना, मज़ा आ गया। तो चलिए मैं आपको ले चलूँ अगले फरमाइशी नगमे की तरफ। और ये भी अगर कुछ कसर रह गई हो जो मैंने फरमाया पहले, तो वो मैं पूरी करवाता हूँ अब इस फरमाइशी नगमे की तरफ ले चल के आपको। और ये आप सुनेंगे जिनकी फरमाइश पर, मैं आपको छोटा सा हिंट देता हूँ फिर बताता हूँ ये किन की फरमाइश पर है। लेकिन इस बीच हमारे साथ विनय सक्सेना साहब गाज़ियाबाद से जुड़ चुके हैं, संदीप सिंह जी हमारे साथ उदयपुर से शामिल होते हैं शो में। सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, आइए आपको ले चलूँ अगले गीतों की तरफ। लेकिन इस बीच शेफाली श्रीवास्तव रायबरेली से ज्वाइन कर चुकी हैं, और हमारे साथ जुड़े हैं विराज और आभा जी, मास्टर विश्रुत एंड ईशानी, और उनके साथ प्रेम आंटी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कैलिफोर्निया से जुड़ते हैं। और प्रेम आंटी, आपकी फरमाइश हमारे तक पहुंच चुकी है, थोड़ा सा आपको वेट करना है, फिर आपकी फरमाइश भी लेकर आएंगे। चलिए दोस्तों, आपको सुनवाता हूँ मैं ये खूबसूरत नगमा, और वो कसर पूरी की जाए जिसकी कसक मैंने उठाई है थोड़ी देर पहले। तो चलिए आप बताइए कौन से गाने की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर।

चलिए, तो आपको उसी मधुर आवाज़ की तरह एक और जो आवाज़ सुनाई देगी इस गाने में, तो अगर कुछ कमी रह गई थी पिछली वाली फरमाइशी नगमे में, वो इसमें पूरी होने वाली है आपकी। शालिनी सिंह, विकास ढींगरा, मधुसूदन दीक्षित, पवन कुमार सिंह, शेफाली श्रीवास्तव, सुरेश सप्रा और शोभित श्रीवास्तव जी की फरमाइश पर आपको ले चलते हैं सुनवाने के लिए ये खूबसूरत गीत। अब

सावन को आने दो टाइटल सॉन्ग सुना दोस्तों आपने, इस फिल्म से लिया गया था। और जसपाल सिंह के साथ इसमें एक और कल्याणी मित्रा, इनकी आवाज़ थी, कोरस इनके साथियों ने दिया था इस फिल्म में। और जसपाल सिंह साहब की आवाज़ भी बहुत शानदार है, आपने नोटिस किया होगा। इन्होंने जितने गाने गाए हैं नदिया के पार में भी इन्होंने गाए हैं गाने, अगर मेरी याददाश्त सही बताती है तो। इनके गाए हुए गाने बहुत शानदार रहे हैं हमेशा, इनकी आवाज़ कानों को ही नहीं दिल तक को छूती है और हमेशा के लिए एक बहुत ही प्यारा सा एहसास छोड़ जाती है, जिस वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके गाए हुए गाने सुनकर। अजीब सा एक बहुत अच्छा सा माहौल क्रिएट हो जाता है। तो दोस्तों ये करेक्शन है, शिफाली श्रीवास्तव जी ने कंफर्म किया मेरी रिक्वेस्ट पर, जो मैंने पूछा था आपसे वृष्टि पड़े तापुर तुपर, उस सॉन्ग के सिंगर थे हेमलता के साथ साथ सुरेश वाडकर साहब। तो करेक्शन के लिए थैंक यू सो मच शिफाली जी। और लगता है वीना द्विवेदी मैम को बंगाली, संस्कृत, हिंदी सभी भाषाओं की जानकारी बहुत अच्छे से है, और उन्होंने कुछ प्रोनंसिएशन पर बात हुई थी जब, कि वृष्टि जो है वो संस्कृत वर्ड है, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया। कहते हैं कि संस्कृत निष्ठ हिंदी के ही हैं, जो बंगाली भाषा में अधिकतर संस्कृत निष्ठ हिंदी के ही हैं, मात्र उच्चारण के कारण ही ये भाषा अलग लगती है। तो उच्चारण आप कैसे करते हैं उस पर डिपेंड करता है, जैसा कि मैंने शायद इस बात पर कुछ बोला था कि वृष्टि बोलें संस्कृत लगता है, वृष्टि बोलें बंगाली लगता है, और थोड़ा सा उसमें मिठास ऐड हो जाती है जब बंगाली एक्सेंट आ जाता है, तो क्या बात है। थैंक यू सो मच वीना मैम फॉर क्लैरिफाइंग दिस अलॉन्ग विद अभिजीत चटर्जी साहब। और मैंने जैसा पूछा था कि सप्रा साहब अभी सफ़र पे हैं, तो पहुँचे नहीं हैं, डेस्टिनेशन के करीब हैं, ट्रेन में हैं, तो देखिए आपके डेस्टिनेशन से पहुँचने के पहले ही मैं आपके लिए जो है आपके पसंदीदा सॉन्ग को इसमें शामिल करने की कोशिश करूँगा, बस थोड़ा सा वेट कीजिएगा सुरेश भाई। आपने हिंट छोटा सा सुना और सही पहचान कर जवाब दिए, तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि किन्होंने सही जवाब हमें लिख भेजे। छोटा सा हिंट सुनते ही, पंकज सक्सेना साहब, पवन कुमार सिंह साहब, शालिनी सिंह जी, शिफाली श्रीवास्तव जी, सुरेश, सप्रा साहब, सुप्रिया गुप्ता जी और डॉली अरोरा, संजीव अरोरा, संजय गुप्ता फ्रॉम लखनऊ, सभी ने सही जवाब लिख भेजे। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत बधाई आपको, आपने सही पहचाना इस हिंट को। इस बीच हमारे साथ संजीव सिंह साहब फरीदाबाद से जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग संजीव साहब, कैसे हैं आप? आइए और देखिए, वही बात यहाँ पर मेंशन की है कि जसपाल सिंह साहब के, जिनका कि आपने ये गाना सुना, जिनकी आवाज़ में उनको बहुत सारे श्रोता पसंद करते हैं उनकी आवाज़ को, ये कंफर्म किया है। सुरेश सप्रा जी ने कहते हैं जसपाल जी ग्रेट सिंगर, और यही बात मुझे किसी और श्रोता ने भी बताई है, मैं आपको बाद में देता हूँ ये जानकारी। लेकिन इस बीच हमारे साथ संजय सक्सेना जुड़ गए हैं लखनऊ से। संजय साहब कैसे हैं आप? 2-3 हफ्ते पहले आपकी कुछ तबीयत नासाज थी, फीवर था आपको, होपफुली यू हैव रिकवर्ड फुल्ली फ्रॉम इट, एंड वेलकम टू द गाते गुनगुनाते शो। आपकी फरमाइशें हमारे प्रोग्राम में लाइंड अप हैं, आपका वेट था थोड़ा सा तो पूरा हुआ। चलिए दोस्तों आपको ले चले हम एक और शानदार पेशकश की तरफ, और ये किन की फरमाइश पर आप सुनने जा रहे हैं मैं आपको बताता हूँ।
ये है श्रेयश पाठक, अर्चना पाठक फ्रॉम आई थिंक दे आर विजिटिंग फिलाडेल्फिया। सो श्रेयश भाई, आप वापस आ गए या अभी भी ट्रैवल पे हैं बताइए। लेकिन आप सुनिए अपनी फरमाइश का ये खूबसूरत गाना, शराबी फिल्म से लिया गया है, 1964 में रिलीज़ हुई थी और देवानंद साहब के ऊपर ये फिल्माया गया गीत है। आइए एंजॉय करते हैं श्रेयश।

दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब की शानदार आवाज़ में ये खूबसूरत गीत आपने सुना और सावन की बात इसमें की गई है और लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क जहाँ से श्रेयस साहब ज्वाइन करते हैं वहाँ पर भी इस समय वहाँ भी बारिश हो रही है, तो बहुत सूट कर रहा है ये गाना उनके वहाँ पर ये सुनते हुए। तो क्या बात है श्रेयस भाई, बहुत ही शानदार गाना। ये मैंने थोड़े अरसे के बाद सुना तो बहुत मज़ा आया मुझे कि फिर से अब मेरी प्लेलिस्ट में ऐड होने वाला है ये बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सॉन्ग रिक्वेस्ट श्रेयस पाठक साहब। आइए दोस्तों, आपको ले चलूँ अब अगले फरमाइशी नगमे की तरफ और उम्मीद करता हूँ आप इसको बहुत ही आसानी से पहचान जाएंगे सुनते ही इसका हिंट। तैयार हो जाइए और डिटेल्स शेयर कीजिए अपने मैसेज में सुनते ही।

0: शालिनी सिंह, संदीप सिंह, देवेंद्र कुमार, शेखर अग्निहोत्री, डॉक्टर नीलम अग्निहोत्री, पवन कुमार सिंह, शेफाली श्रीवास्तव, संजीव अरोरा, डॉली अरोरा और सुरेश सप्रा जी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये खूबसूरत नगमा।
1: डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स सारेगामा.com।

मंजिल फिल्म से ये आपने जो गाना सुना किशोर कुमार साहब की खूबसूरत आवाज़ में और बहुत ही शानदार फरमाइशी नगमा था ये, आपने महसूस किया मौसम सावन का है और कितना बढ़िया उसको कंपोज़ किया है आरडी बर्मन साहब ने, क्या बात है। और दोस्तों आपके तमाम जवाब हमें सही जवाब मिले, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को जिन्होंने सही जवाब हमें लिख भेजे। सबसे पहले तो बड़े बॉय का मैसेज आया, यानी कि शेखर अग्निहोत्री साहब ने जो है रेस जीत ली ऐसा लगता है। छोटे छोटे कदमों के साथ इन्होंने जो है चलकर रेस जीती, आप जान रहे हैं कौन सी बात कर रहा हूँ मैं। इन्होंने फर्स्ट लाइन को पहचाना लेकिन कम वर्ड्स में इसको मेंशन किया, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये शेखर साहब सबसे पहले पहुँचे हैं सही जवाब के साथ। बहुत बहुत बधाई हो शेखर भाई, अपना जो है जन्मदिन अच्छे से मनाएं आप और इंजॉय करते रहें। आपके दिन की शुरुआत तो हम कर ही चुके हैं एक खूबसूरत पेशकश के साथ और आप भी बहुत अच्छे से शिरकत कर रहे हैं इस शो में। तो शेखर भाई के साथ साथ सही जवाब जिन्होंने दिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ थोड़ी देर में। इस बीच हमारे साथ उज्जवल जौहरी साहब जुड़ गए हैं, शाहजहाँपुर से जुड़ते हैं। गुड मॉर्निंग उज्जवल साहब, कैसे हैं आप? और थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन एंड योर रिस्पॉन्स, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। शालिनी सिंह जी ने सही जवाब दिया, पवन कुमार सिंह साहब ने सही जवाब दिया, शिफाली श्रीवास्तव ने भी उज्जवल साहब के साथ सही जवाब भेजा है, संजय सक्सेना जी ने भी, सुरेश सप्रा साहब का भी सही जवाब हमें मिला और इनके साथ साथ संजीव अरोरा, डॉली अरोरा, सुप्रिया गुप्ता, संजय गुप्ता, इन सभी ने सही जवाब हमें लिख भेजे। और एक बहुत ही इनकरेजिंग मैसेज मिला है सुप्रिया जी की तरफ से, लखनऊ से ज्वाइन करती हैं, कहती हैं अनबिलीवेबल, इतनी तकलीफ़ में भी इतनी अच्छी एंकरिंग विजय सिर्फ तुम ही कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर दिस इनकरेजिंग मैसेज सुप्रिया जी, एंड थैंक्स फॉर राइट आंसर एंड कंग्रेचुलेशंस एज वेल। आइए दोस्तों आपको ले चलूँ अगले फरमाइशी नगमों की तरफ और अब देखिए कौन सा गाना आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे साथ जो शेयर करते हैं एक से एक शानदार गीतों की फरमाइश लाते हैं, नाम उनको मैं बताता हूँ आपको। पहले आपको दे रहा हूँ मैं हिंट, छोटा सा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा ही रहेगा हिंट, आपको समझ में आ जाएगा कौन से गाने की बात की जा रही है यहाँ पर, फिर बताता हूँ किन की फरमाइश है ये।

मैं तुझको मान लूं। दोस्तों, इसमें कुछ लिरिक्स का गड़बड़ है जहाँ मैं देख रहा हूँ, बट आप समझ गए होंगे कौन से गाने की यहाँ पर बात की गई है। तो आप अपना मैसेज भेज सकते हैं इसी को, मैसेज को मतलब कि हिंट को सुन के, और थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए इस हिंट को।

दोस्तों अभिजीत चटर्जी और सीमा चटर्जी के साथ साथ ज्योतिका आंटी एंड शेखर अग्निहोत्री अलॉन्ग विद डॉक्टर नीलम अग्निहोत्री की फरमाइश है ये ताल फिल्म से लिया गया ये नगमा है। आप समझ गए इसको, आपके रिस्पॉन्सेज देखकर मुझे पता लग गया है। आइए एंजॉय करते हैं।

ताल फिल्म का टाइटल सॉन्ग आपने सुना दोस्तों, अलका याग्निक और उदित नारायण की खूबसूरत आवाज़ों में। एआर रहमान का इसमें म्यूज़िक था दोस्तों। सुभाष घई की ये फिल्म जिसमें आपने अनिल कपूर, अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय को देखा। तो इस बीच हमारे साथ प्रेमा शर्मा और अमिताभ शर्मा जी जुड़ गए हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। गुड मॉर्निंग टू यू बोथ। और कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द शो दोस्तों। आपको ले चलता हूँ सही जवाबों की तरफ, और सही जवाब जिनके हमारे पास आए हैं उनके नाम मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। सही जवाब वालों के नाम हैं संजीव अरोरा, डॉली अरोरा फ्रॉम गाज़ियाबाद, शालिनी सिंह फ्रॉम बदायूं, पवन कुमार सिंह फ्रॉम न्यू दिल्ली, शेखर अग्निहोत्री फ्रॉम शाहजहाँपुर, शिफाली श्रीवास्तव फ्रॉम राय बरेली। ऑलराइट, प्रेमा जी और अमिताभ जी ने सही जवाब आते ही लिख भेजा है। उज्जवल जौहरी साहब ने सही जवाब भेजा है। वीना द्विवेदी मैम ने सही जवाब दिया। अभिजीत भाई बहुत खुश हैं, उनका गाना सभी को पसंद आया। बहुत ही शानदार फरमाइश रहती है आपकी, एनीवेज थैंक यू। दीपेश साहब कहते हैं उदित नारायण साहब की आवाज़ है इसमें, और शिफाली श्रीवास्तव जी ने इसकी कुछ लाइंस बहुत पसंद की हैं इस गाने की लिरिक्स में जो हैं। दीपेश पाठक हमारे साथ कुछ डिटेल्स शेयर करते हुए कहते हैं, ताल फिल्म आसुभाष गईस फिल्म जिनका मैंने अभी जिक्र किया उसमें मुख्य किरदार जिन्होंने निभाया था उनके नाम आपको मैंने बताए, लेकिन एक छोटी बहुत अहम बात जो इन्होंने शेयर की है, कहते हैं कि सुभाष घई साहब ने ऐश्वर्या राय के मेकअप के लिए वर्ल्ड्स नंबर वन मेकअप आर्टिस्ट को बहुत महंगे में हायर किया था। आप देखेंगे कि ऐश्वर्या इस फिल्म में सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखती हैं, और ऐसा मेकअप किया गया है उनका कि वो लगता है कि बगैर मेकअप के ही इस सॉन्ग में एक्ट कर रहे हैं। तो क्या बात है, थैंक यू फॉर दीज वंडरफुल डिटेल्स दीपेश साहब। और सुभाष घई जिनकी ये फिल्म थी उनके बारे में ये बताते हैं कि शोमैन का दर्जा सिर्फ राज कपूर साहब के बाद सुभाष घई साहब को ही मिला है। क्या बात है, हमारे साथ जिन्होंने सही जवाब लिख भेजे हैं उनके नाम अभी और बाकी हैं, और इसमें हैं सुप्रिया गुप्ता जी और बाकियों के नाम मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इस बीच हमारे साथ मधुसूदन दीक्षित साहब जुड़ गए हैं, और मधु साहब आप अपने तमाम साथियों के साथ जुड़े हैं आज, तो उनकी डिटेल्स भेजें जिससे कुछ बातचीत शुरू की जाए इस बारे में। और उम्मीद करता हूँ आप सभी एंजॉय कर रहे हैं आज के शो में। सावन के गीत हम आपको सुनवा रहे हैं दोस्तों, बॉलीवुड के ही सुने हैं आज तक, मतलब अब तक आपने पहला वाला छोड़कर, तो आइए कुछ और गीत आपके लिए लेकर आया हूँ। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके सॉन्ग्स लाइंड अप हैं। अभी तक मालूम है मुझे कि पहुँचे नहीं हम आपके सॉन्ग्स तक, लेकिन जल्द ही वहाँ पहुँचने जा रहे हैं हम आपके सॉन्ग्स के लिए। आइए, आप कौन सा गाना लाइंड अप है आपको बताते हैं। कुछ तो ऐसे गाने बहुत शानदार फरमाइशें हैं, अभी तक मैंने उनसे सुना नहीं है कि वो ज्वाइन कर चुके हैं हमारे शो में, तो इसलिए थोड़ा सा वेट है कुछ बहुत ही शानदार गानों का, मैं वेट कर रहा हूँ प्ले करने के लिए। तो आप अगर ज्वाइन कर चुके हैं छोटा सा मैसेज लिख डालिए और कंफर्म कीजिए अपनी प्रेजेंस शो में, तब आपका गाना मैं लाइनअप करूँगा। तो चलिए आपको ले चलूँ अगले फरमाइशी नगमे की तरफ, और छोटा सा हिंट मैं आपको अगर दूँ इसका, तो आप समझने की कोशिश कीजिए कौन से गाने की बात की जा रही है यहाँ पर। ला ला ला ला ला ला हम्म
चलिए इतना ही मैं हिंट दूंगा इस गाने का, और मैं ज़्यादा विलंब ना करते हुए इस खूबसूरत गीत को सुनवाने जा रहा हूँ पवन कुमार सिंह साहब की फरमाइश पर, जो कि न्यू दिल्ली से ज्वाइन करते हैं।

मैं प्यासा तुम सावन फरार फिल्म से लिया गया ये गीत आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। और राजेंद्र किशन के इसमें बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत बद किया हुआ था ये नगमा। दोस्तों इसमें राइटर राजेंद्र किशन थे, यानी कि स्क्रिप्ट राइटर थे, और ऑथर का नाम राजेंद्र कृष्ण, यानी कि दोनों ही इन्होंने लिखी थी स्क्रिप्ट भी और गाना भी। आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दैट, लेकिन एनीवेज व्हाट आई एम श्योर अबाउट इज किशोर कुमार और लता मंगेशकर की इसमें शानदार आवाज़ें थी। और फरार फिल्म की बात हुई थी कुछ शो लाइक पिछले शो में मैंने ये बात पूछी थी, तो शेफाली श्रीवास्तव जी ने कन्फर्म किया था कि एक ऐसी फिल्म जिसमें कि अमिताभ बच्चन को देखा गया था कि वो फरार हो के किसी एक घर में पहुंचते हैं जहां पर फिर आगे की स्टोरी चलती है। उनको उनकी दाढ़ी दिखी है थोड़ी सी चेहरे पर, लेकिन उस फिल्म में था कौन, जो हीरोइन थी वो कौन थी मुझे अभी याद नहीं है, जया भादुड़ी थी या फिर उन रेखा थी उसमें, आई एम नॉट श्योर। तो ये कन्फर्म कीजिए आप फरार फिल्म में किन्होंने मुख्य भूमिकाएँ निभाई थी। उसके बाद आपने तो कमाल किया है दोस्तों, ज़रा सा हिंट सुनकर सही जवाब लिख भेजे, क्या बात है। सही जवाब लिख भेजने वालों के नाम मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। छोटे से हिंट को पहचाना है आपने, शालिनी सिंह जी, शेखर अग्निहोत्री, पवन कुमार सिंह जी, शिफाली श्रीवास्तव, प्रेमा शर्मा, अमिताभ शर्मा के साथ साथ डॉली अरोरा और संजीव अरोरा फ्रॉम गाज़ियाबाद। तो इस फिल्म की डिटेल में कुछ मुझे चीज़ें दिख रही हैं, लेखक गुलजार, राजेंद्र कृष्ण का इसमें गीत है, तो कल्याण जी आनंद जी का संगीत बद किया हुआ है दीपेश साहब के पेशकश, यानी इन्होंने वो डिटेल्स शेयर की थी। शर्मिला टैगोर हैं, उज्जवल जौहरी साहब के साथ साथ शेफाली जी कंफर्म करती हैं, तो शर्मिला टैगोर एंड संजीव कुमार हैं उसमें। थैंक यू सो मच फॉर दीस डिटेल्स। सही गीत पहचाना है संजय गुप्ता साहब ने लखनऊ से, और चलिए दोस्तों आपको ले चलूं अगले फरमाइशी गीत की तरफ। और मैंने काफ़ी वेट किया, हमारे एक नए श्रोता जुड़ने वाली थी लेकिन उनकी तरफ से कन्फर्मेशन मुझे नहीं मिला, तो गाना जो है वो बहुत ही शानदार है, उसके लिए मुझे वेट करना पड़ रहा है। तो देखिए मैं कौन सा गीत उसकी जगह ले सकता हूँ, और अगर नहीं मिला कोई उसका टक्कर का तो मैं फिर उसको अभी प्ले करने वाला हूँ। एनीवेज जब वो ज्वाइन करें तो मेंशन किया जाएगा इस बारे में। चलिए सुनवाते हैं दोस्तों, ये जिनकी फरमाइश पर है मैं बताता हूँ आपको, छोटा सा हिंट अगर दे सकूँ इस बारे में तो इस तरह से होगा।

आप समझ गए होंगे इतनी ही हिंट को सुनकर। आपको मैं सुनवाने जा रहा हूँ ये खूबसूरत फरमाइशी गीत सुप्रिया गुप्ता फ्रॉम लखनऊ एंड रानी मैम। आई डोंट नो द फुल नेम देयर, सो आई एम जस्ट मैंशनिंग इट द वे इट वॉज गिवन एस रानी। सो उनकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं इस खूबसूरत गीत को।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने चोरी चोरी फिल्म से लिया, सॉरी नॉट चोरी चोरी, चुपके चुपके 1975 की कॉमेडी फिल्म थी ऋषिकेश मुखर्जी साहब की, बहुत ही खूबसूरत इसमें गाने थे और कॉमेडी बहुत शानदार, और इस बात को कंफर्म किया है शालिनी सिंह जी ने और कहती हैं कि बहुत ही बेहतरीन कॉमेडी थी इस फिल्म में। और कंफर्म करते हैं दीपेश पाठक, कुछ डिटेल्स इसमें शेयर किए इन्होंने जिससे पता लगता है अमिताभ बच्चन के साथ इसमें देखा गया है शर्मिला टैगोर और धर्मेंद्र असरानी, ओम प्रकाश, इन सभी को मुख्य किरदारों में देखा गया है। और एक और हीरोइन इसमें कोई है जिनकी मैं शक्ल गैस नहीं करना चाहूँगा इसमें जितना दिख रहा है कैन नॉट टेक ए गैस, आपको अगर पहचान में आता है, आपको याद है तो आप बताइए कौन थी इसमें जो दूसरी हीरोइन थी। बहुत ही शानदार कॉमेडी थी इस फिल्म में और गाने लाजवाब। इस बीच हमारे साथ समित चटर्जी जुड़ गए हैं, कलकत्ता से जुड़ते हैं। समित साहब कैसे हैं आप? मुझे याद है आपकी फरमाइशें कई बार रह गई हैं प्ले होने से, आप प्लीज़ अपनी फरमाइश लिख भेजें और आज मैं आपके गाने को प्ले करूँगा फॉर श्योर। प्लीज़ गो हैड एंड शेयर योर सॉन्ग। तो शिफाली श्रीवास्तव कंफर्म करती हैं शालिनी जी के साथ कि इसमें जया भादुड़ी को देखा गया था, क्या बात है। और सुरेश सप्रा साहब जो कि अभी ट्रैवल में हैं, तो मैंने नोटिस किया वो पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन तक, लेकिन हमारे साथ सफ़र का मज़ा ले रहे हैं और शो का मज़ा भी लिया जा रहा है कुछ, तो आपको मैं कुछ सुनवाने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले सही जवाब जिन्होंने हमें लिख भेजे छोटे से हिंट को सुनते ही, उनके नाम हैं शालिनी सिंह, शेखर अग्निहोत्री, डॉली अरोरा,

इंटरनेट वगैरह सब बहुत खूबसूरती से चल रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। सुनाता हूँ मैं ये गाना आपको कुछ एक क्लिप के बाद। एक क्लिप जो है उसमें आप सुनेंगे सुरेश सपरा जी के साथ नीतू जी, जो उनकी वाइफ हैं। तो देखिए ये एक दूसरे से क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या समझा रहे हैं एक दूसरे को। सुनिए फिर आप बताइए कौन से गाने की बात यहाँ पर की जाएगी आगे, और तैयार हो जाइए फिर सुनने के लिए अगले गाने को।

दोस्तों, ये तो थे सुरेश, सप्रा और नीतू जी। तो आपने समझ लिया होगा क्या कहना चाह रहे हैं ये। तो आइए सुनवाते हैं आपको ये खूबसूरत फरमाइशी गाना। और ये है फरमाइश विकास ढींगरा साहब की इंडोनेशिया जकार्ता से, संदीप सिंह फ्रॉम उदयपुर, रजी साहब न्यू दिल्ली और शाहजहाँपुर, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कहाँ से ज्वाइन करते हैं, डॉक्टर आरसी खन्ना एंड सजनी खन्ना फ्रॉम बरेली, सुरेश सप्रा जी एंड नीतू जी। आइए सुनते हैं इस खूबसूरत नगमे को अब।

0: आइए दोस्तों, इस खूबसूरत फरमाइशी गीत के बाद आपको सुनवाता हूँ भारत FM की तरफ से एक छोटा सा संदेश, फिर आपकी फरमाइशी गाने कंटिन्यू करते हैं।
1: दिस इज भारत FM।
2: बजेगा भारत, झूमेगा भारत।

0: ये है भारत FM।
1: बजेगा भारत, झूमेगा भारत।
2: जी हाँ दोस्तों, बजेगा भारत FM, झूमेगा भारत, गाएगा भारत, गुनगुनाएगा भारत। और जब गुनगुना ही रहा है आज, तो सावन के गीत गुनगुना रहा है भारत आज। तो दोस्तों, आपकी फरमाइश के हम सावन के जो गीत हैं वो लाइनअप कर चुके हैं। कुछ तो आपने सुने और कुछ बाकी हैं, तो चलिए आपको ले चलता हूँ। एक बहुत ही शानदार फरमाइश है हमारे प्रेम आंटी, जो कि कैलिफोर्निया से ज्वाइन करती हैं, विराज साहब, आभा जी, मास्टर विश्रुत और ईशानी जी के साथ। तो सुनवाते हैं आपको ये गाना। अगर आपने ये पहले सुना है तो बताइएगा, बहुत ही शानदार फरमाइशी गीत है ये।

सावन के बादलों उनसे कहो। दोस्तों ये फरमाइश थी प्रेम आंटी कैलिफोर्निया से जो ज्वाइन करते हैं उनकी, और इसमें नौशाद साहब का संगीत था। सिंगर्स इसमें जो थे करण दीवान, जोहरा बाई, अम्बाले वाली, इन लोगों की आवाज़ें मैंने बहुत दिनों के बाद सुनी हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो माहौल याद आया जो रेडियो पे हम गाने सुनते थे। कई बार क्या होता है कि पावर कट होता है, जब हम लोग छत पर पहुंच जाते हैं रेडियो लेकर सुनते हैं गाने वहां पर, तो शानदार माहौल बनता है। इस तरह के गाने सुनकर मुझे उन दिनों की याद आई। थैंक यू सो मच प्रेम आंटी, आपने जो ये सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजी बहुत ही शानदार, और बहुत सुकून मिलता है गाने सुनकर ऐसे। तो चलिए आप दोस्तों, आपको ले चलता हूँ अगले फरमाइशी नगमे की तरफ। और अब जिनकी फरमाइश पर मैं अगला गाना लेकर आया हूँ, उनकी फरमाइश में काफ़ी वक्त से कोशिश कर रहा था कि प्ले की जाए, लेकिन रह जा रहे थे कई बार, मतलब उन्होंने फरमाइश भेजी भी थी तो उसको कंपनसेट करना ज़रूरी है, लाजमी है। इनकी रिक्वेस्ट जो है पूरी हो, इनकी शानदार फरमाइशें रहती हैं हमेशा ही समित साहब की। तो आइए मैं आपको सुनवाऊंगा समित चटर्जी साहब की फरमाइश पर ये अगला गीत। और इसकी अगर थोड़ी सी हिंट की बात की जाए तो आपको गुनगुना के मैं इसकी कुछ लाइनें हिंट के रूप में दे रहा हूँ, आप बताइए कौन सी फरमाइश है यहाँ पर।

love. समझ गए होंगे दोस्तों कौन से गाने की फरमाइश की है यहाँ पर समित साहब ने। आइए सुनते हैं इस शानदार खूबसूरत नगमे को।

समित साहब की फरमाइश पर आपने ये बहुत ही शानदार गीत सुना दोस्तों, और सही पहचाना जिन्होंने इस गाने को। उनके नाम हैं शालिनी सिंह, संजय सक्सेना, पवन कुमार सिंह, शिफाली श्रीवास्तव, प्रेमा शर्मा, अमिताभ शर्मा, उज्जवल जौहरी। और आप सभी के साथ साथ सही पहचाना है डॉली अरोरा, संजीव अरोरा जी ने गाज़ियाबाद से। कुछ और डिटेल्स इस सॉन्ग की कोरियोग्राफी के बारे में लिखी गई हैं, वो हैं दीपेश पाठक साहब की तरफ से शेयर की हुई। श्यामक दावर, एन इंडियन कोरियोग्राफर नोटेड एज वन ऑफ द फर्स्ट टू ब्रिंग कंटेम्प्रेरी जैज एंड वेस्टर्न फॉर्म्स ऑफ डांस टू इंडिया, ये बताते हैं इस बारे में। तो उनका ही इसमें कोरियोग्राफ किया गया ये सॉन्ग है, और भी दूसरे सॉन्ग्स उन्होंने कोरियोग्राफ किए थे। तो उन्होंने मॉडर्नाइज़ किया है इंडियन डांस को, ऐसा इसमें बताया गया है। तो बहुत ही शानदार तरह से वो फिल्म को उन्होंने डायरेक्ट किया था, म्यूज़िक डायरेक्शन आई मीन टू से कोरियोग्राफी उनकी बहुत शानदार रही। बहुत अच्छा डांस करते हैं खुद भी, और बहुत लोगों को उन्होंने तैयार किया डांस ट्रेन करके, तो क्या बात है। चलिए दोस्तों, आपको अब ले चलता हूँ मैं एक बहुत ही शानदार जानदार गाने की तरफ। काफ़ी वेट के बाद हम लेकर आए हैं आपके लिए ये वाला सॉन्ग। पहचानिए, बताइए कि यहाँ पर कौन से गाने की रिक्वेस्ट की जा रही है। पहली बार बरसी बरसात ऐसी कैसी ये, पहली

दोस्तों, मुझे जो लिरिक्स इसके यहाँ पर मिले हैं थोड़े से डिफरेंट हैं, तो इससे आप समझ गए होंगे कि क्या बात की जा रही है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँ अगर मैं इस हिंट को, तो इस तरह से है।

0: ये है फरमाइश संजय सक्सेना साहब की, लखनऊ से ज्वाइन करते हैं। बहुत ही खूबसूरत गाने लेकर आते हैं शो में। आइए सुनते हैं संजय साहब आपकी फरमाइश का ये गीत।
1: डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स
0: saregama.com। वो हैं अतुल त्यागी, ये अभी हिमाचल या एक जगह इन्होंने भेजी थी क्लिप्स, वीडियो क्लिप, वहाँ से ट्रैवल पे थे। आप त्यागी साहब वापस आ गए हैं कि नहीं बताइएगा।

तो ये थे संजय सक्सेना साहब लखनऊ से, और इन्होंने तो माहौल ही बदल दिया है इस फरमाइशी गीत के साथ। ऐसा लगता है कि बिल्कुल बारिश में खड़े हैं और मज़ा ले रहे हैं। बच्चन साहब, स्मिता पाटिल, इन पर फिल्माया गया ये नगमा आपने सुना दोस्तों। और आपको इस बारे में जानकारी होगी कि स्मिता पाटिल जो हैं वो आर्ट फिल्म्स के लिए जानी जाती थी इस फिल्म से पहले। तो जब इस फिल्म में इस गीत की शूटिंग हुई उसके बाद उनको रोना सा आ गया कि क्या हो रहा है, मतलब किस टाइप की जो है एक्टिंग कराई जा रही है इस गाने में इनसे। तो फिर उन्हें प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन साहब ने समझाया किसी तरह की कमर्शियल फिल्म है तो इसमें ऐसा चलता है। तो उन्होंने जो है समझाया, फिर आपने देखा कि स्मिता पाटिल ने कई मूवीज़ की हैं, एक से बढ़िया आर्ट फिल्म में तो उन्होंने अपनी कलाकारी का, अदाकारी का लोहा मनवाया था, लेकिन कमर्शियली ये कितनी हिट हुई थी फिल्म जिसका आपने नमक हलाल फिल्म का गाना सुना। तो ये डिटेल जो शेयर की थी हमारे साथ वो थे दीपेश पाठक, थैंक्स फॉर दीज डिटेल्स। आइए, आपने छोटा सा हिंट सुनते ही इसका सही जवाब दिया दोस्तों, क्या बात है। इस बीच हमारे साथ कुछ और श्रोता जुड़े हैं, मैंने आपको बताया कि अतुल त्यागी गाज़ियाबाद से जुड़ते हैं, ट्रैवल पे थे, हिमाचल के लिए निकले हुए थे, और मुझे पता नहीं अभी भी आप वापस आए हैं कि नहीं अपने होम टाउन, लेकिन आपने भी इस गाने को सही पहचान कर जो है हमें मैसेज भेजा। आपके साथ साथ सही जवाब देने वालों के नाम शालिनी सिंह, संजय सक्सेना ऑफ कोर्स, एंड शेखर अग्निहोत्री, डॉक्टर नीलम अग्निहोत्री। उम्मीद करता हूँ शेखर साहब आपके लिए केक तैयार किया जा रहा होगा, डॉक्टर साहिबा के ज़रिए जो है आपका दिन बहुत ही शानदार गुजरेगा। हम सभी की तरफ से वो आपको शुभकामनाएं दें और आपका दिन जो है शानदार गुजरे आपके फैमिली के साथ, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। प्रेमा जी, अमिताभ शर्मा जी, सही जवाब सुरेश सप्रा जी, उज्जवल जौहरी साहब ने सही जवाब और फिल्म का नाम भी बताया, बप्पी लहरी साहब का इसमें संगीत था, क्या बात है। अभिजीत भाई ने बहुत एंजॉय किया सॉन्ग को, क्या बात है। हमारे साथ इस बीच जुड़े हैं राजीव कुमार सिंह साहब शाहजहाँपुर से। राजीव भाई, गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप, और स्वागत है गाते गुनगुनाते शो में आपका। चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं अगले एक और शानदार नगमे की तरफ, और ये वाकई में शानदार गाना है क्योंकि पिछला गाना आपने सुना बेहतरीन था, तो ये भी कुछ अपने में जो है एक शानदार ही सॉन्ग है जो आने वाला है आपके पेशे नज़र करने जा रहे हैं हम। पहचान लीजिए इस गाने को और बताइए कौन से गाने की फरमाइश यहाँ पर की जा रही है।

ताज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है, ऐ जान वफा तुम खूब मिल।

सरिता रानी मैम, शालिनी सिंह जी, पवन कुमार सिंह साहब और सुरेश सप्रा जी, इन सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ये बेहतरीन नगमा।

0: कश्मीर की कली फिल्म से लिया गया ये गीत आपने सुना दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा जी की, आशा भोसले जी की आवाज़ में। ओपी नैयर का संगीत, इसमें आपने शर्मिला टैगोर के साथ शम्मी कपूर साहब को देखा होगा। तो 1964 की बहुत ही शानदार फिल्म थी ये, और तमाम श्रोताओं ने इस गाने को पसंद किया और सही जवाब लिख भेजे हैं। उनके नाम शालिनी सिंह, प्रेमा शर्मा, अमिताभ शर्मा, शेफाली श्रीवास्तव, सुरेश सप्रा, उज्जवल जौहरी, दीपेश पाठक, अभिजीत चैटर्जी साहब और क्या बात है, बहुत ही शानदार तरह से आपने इस गाने को पसंद किया है। डॉली अरोरा, संजीव अरोरा, तो दोस्तों अभिजीत भाई इनकरेजिंग कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने पसंद किया हिंट को और गाने को भी, क्या बात है। कुछ और इनकरेजिंग कमेंट्स मिला है। रितेश सिंह साहब शाहजहाँपुर से हमारे साथ जुड़े हैं अपने फैमिली के साथ, तो क्या बात है, वेलकम टू द शो रितेश साहब। और जे एस शुक्ला जी हमारे साथ, संजय राय साहब जो उनके मित्र हैं, उनके साथ ट्यून्डिन हैं आज। सो गुड मॉर्निंग टू यू बोथ, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आपकी सुबह शानदार हो रही होगी। इस शो के ज़रिए एक से खूबसूरत नगमे आ रहे हैं आपके पेश नज़र, और ये गाना आपने पसंद किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेमा जी ने हिंट पर कुछ बातें लिखी हैं, इनकरेजिंग कमेंट्स हैं। सो प्रेमा जी और अमिताभ शर्मा साहब रायगढ़ रायपुर छत्तीसगढ़ से लिखते हैं, क्या गाया है आपने हिंट को, इन्होंने सराहा है, कहते हैं लग नहीं रहा आपको फ्रैक्चर है, तो आपसे सीखना चाहिए दर्द को कैसे हराया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर दीज इनकरेजिंग कमेंट्स टू बोथ ऑफ यू। आइए दोस्तों ले चलता हूँ आपको।
1: Everybody wants cheap airfare, but where do you find it? You call low-cost airlines. Their prices are direct from the airlines, and they're so low you can't find these fares published anywhere. They specialize in cheap flights, discount hotel rooms, cheap car rental rates, and great package deals anywhere around the world. Wherever you want to go, they can help you get there cheaply and with the best price guarantee. If you want the lowest prices on your airline tickets or other travel services, call now. That's right, call. That's the only way to get these rates. Experts are standing by 24/7 to get you the cheapest airfare and hotel rates available. So don't wait. Call right now for the lowest travel prices anywhere and for great last-minute travel deals, too.
2: Call 866-607-5510. That's 866-607-5510. 866-607-5510. Call now.

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: ये है भारत FM।
1: बजेगा भारत, झूमेगा भारत।
2: गुड मॉर्निंग सभी को, मैं हूँ आरजे अदिति, आप सबसे रूबरू होने के लिए आ गई हूँ प्यार के दस्तावेज सजाकर। कैसे हैं आप सब? आप लोग तो जानते ही हैं, शनिवार 10 से 11 के बीच में आ जाती हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए। मैं हूँ आरजे अदिति, आप लोगों से फिर पूरे एक हफ्ते बाद मिलने के लिए आई हूँ। और मेरी सारी बातें आप लोग धैर्यपूर्वक यानी बहुत अच्छे से सुनते हैं, मुझे इस बात का पता चलता है, क्योंकि आप लोग इंतज़ार करते हैं मेरा। शुक्रिया दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों का मुझे शुक्रिया करना है। सबके नाम तो मैं नहीं ले सकती, लेकिन वो जानते हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, जैसे कि भारत FM। भारत FM ने आप लोगों से बात करने का एक ज़रिया बना के दिया है। और कहना चाहती हूँ कि बस मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें होती है प्यार के दस्तावेज़ में, मैं अपने दिल की बात, आप लोगों के एहसासों की बात, मेरे एहसासों की बात, सब कुछ सजा कर लेकर आती हूँ। और कहना था, ज़िंदगी तो क्या है मेरे लिए, जिसे पढ़ते पढ़ते सारी उम्र बीत जाए, वो नयाब किताब हो तुम इस बेमतलब सी दुनिया में, बेमतलब सा ख्वाब हो तुम। सब कुछ बेमतलब नहीं होता है, लेकिन मतलबी दुनिया तो है। ये तो हम सब जानते हैं, क्योंकि हम किसी ना किसी जगह से हम गुज़र के ये राय बना लेते हैं, और ये राय गलत भी नहीं होती है। हाँ, सो आप लोग कैसे हैं आज? आज की सुबह आप लोगों के लिए मज़ेदार है कि नहीं है? आप लोग मुझे चाय पीते पीते सुन रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि सुबह की चाय जो है ना, वो बड़ी खुशनुमा सी होती है, हमारे आने वाले दिन को बता देती है कि अगर चाय कड़क मिली तो मिजाज भी कड़क होगा, यानी आप चहकते बोलते रहेंगे और बहुत सारे घर के काम या फिर ज़िंदगी के बहुत सारे पेंडिंग काम हम सब कुछ कर लेते हैं, बस इंतज़ार होता है मोटिवेशन का। वो मोटिवेशन हमें कभी कभी चाय के रूप में भी दे देती है। पता है मैं मोटिवेट कर सकती हूँ, पर मुझे भी तो मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। वो मोटिवेशन आप लोग देते हो मुझे, आप लोग सुनते हो, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे ख्वाब हैं जो चुपते थे कभी, बहुत सारे ख्वाब हैं जो चुपते थे कभी, हम सोच भी नहीं पाते थे कि कैसे उन्हें पूरा करेंगे, पर आज लगता है दिल बहुत सुकून से है, क्योंकि न ख्वाब रहे, न तुम रहे, न ज़िंदगी रही। ऐसी बातें नहीं है, पर ज़िंदगी और ख्वाब दोनों का रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ख्वाब नहीं रहेंगे तो ज़िंदगी भी कहाँ से रहेगी। और आप लोगों से मिलना था कि आप लोग मुझे जानते हैं मैं कहाँ कहाँ मिल जाती हूँ, भारत FM में, हवा पर में, YouTube में। अभी आज सुबह ही मेरी कहानी लॉन्च हुई है, सुनते रहिएगा उसे। कहानी का नाम है उमा। उमा बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर मैंने लिखा है उमा के बारे में, सो सुनिएगा ज़रूर। मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी ही देर बाद, जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि जाना अलाउड नहीं है ना आरजे अदिति को। जब तक आप सुनते रहोगे बस हुक्ड अप हो गए रहोगे। ऐसी बात भी नहीं है कि हमारे यहाँ और भी आज आरजेज हैं, उन्हें भी सुनते रहिए, बहुत बेहतरीन से बेहतरीन शोज़ कर रहे हैं। मैं सोच रहा सिर पर अपार, दिन मास वर्ष का धरे भार, पल प्रतिपल का अंबर लगा, आखिर पाया तो क्या पाया। जब तान छिड़ी मैं बोल उठा, जब थाप पड़ी पगडोल उठा, और औरों के स्वर में स्वर भर कर अब तक गाया तो क्या गाया। हाँ, किसी की लिखी हुई लाइन्स मैं पढ़ रही हूँ। मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप लोगों से रूबरू होना और आप लोगों को सुनते सुनते बहुत सारी बातें करना। बातों में आप लोगों को बताना था कि प्यार के दस्तावेज़ सुनते रहिए। मैं लौट कर आती हूँ थोड़ी ही देर बाद।

गुलजार जी की बेहतरीन बेहतरीन लाइंस पढ़ पढ़ के मेरी तो ज़िंदगी बीत रही है। बहुत अच्छे लगते हैं मुझे गुलजार जी और उनकी सारी शायरियाँ कहानियाँ पढ़ते पढ़ते मुझे। मूवीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि गुलजार जी की डायरेक्टेड मूवीज़ आप लोगों ने कितनी बार देखी होंगी और कौन कौन सी देखी होंगी। आइए फिर से आप लोगों का स्वागत है प्यार के दस्तावेज़ में। हमारे नए पुराने दोस्त जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मैं हूँ आरजे अदिति, भारत एफएम के लिए आप लोगों से रूबरू हो रही हूँ प्यार के दस्तावेज़ सजाकर। तुझे बेहतर बनाने की कोशिश में तुझे ही वक्त नहीं दे पाए हम, तुझे बेहतर बनाने की कोशिश में तुझे ही वक्त नहीं दे पाए हम, माफ़ करना ये ज़िंदगी तुझे ही जी नहीं पाए हम, माफ़ करना ये ज़िंदगी तुझे ही नहीं जी पाए हम। यस, ज़िंदगी में वक्त निकालना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। चाहे आप किसी के लिए भी वक्त निकाल रहे हैं, लेकिन उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है कि आप उनके लिए वक्त निकालने हैं। और कहना था कि प्यार के दस्तावेज़ सुनते रहिएगा, क्योंकि मैं हूँ आरजे अदिति, आप लोगों से रूबरू होने के लिए आती हूँ हर सैटरडे 10 AM to 11, और बंगाली प्रोग्राम होता है किचुकोन जो फ्राइडे 7 PM to 8 PM के बीच बंगाली फ्रेंड्स के लिए मैं कुछ बोलने के लिए आती हूँ। सो बताएं आप लोगों की ज़िंदगी कैसी बीत रही है। आदमी बुलबुला है पानी का और पानी की बहती सतह पर, टूटता भी है डूबता भी है फिर उभरता है फिर से बहता है, ना समंदर निगल सका उसको ना तारीख तोड़ पाई है, वक्त ही महज पर सदा बहता आदमी बुलबुला है पानी का, वक्त ही मंजोस पर सदा बहता आदमी बुलबुला है पानी का। यस, आदमी बुलबुला है पानी का। जब तक पानी के बुलबुला की तरह हम रहेंगे हमारी ज़िंदगी ठोस ना बन पाएगी, और ज़िंदगी को ठोस बनाने के चक्कर में या हम उसे बहुत सारा इम्पोर्टेंस देने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि ज़िंदगी को समय देना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनमें एफर्ट्स तो कम लगते हैं लेकिन उनके साथ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने कभी सोचा है कि आपका कोई इंतज़ार कर रहा है घर पर, माँ पिता इंतज़ार कर रहे हैं आपके घर लौटने का, आप उनसे 10 मिनट या 5 मिनट बात करेंगे, उनकी आवाज़ सुनेंगे, वो आपकी आवाज़ सुनेंगे, तो बहुत एहसासदायक है ना। सोचते भी नहीं है कि हाँ हमें ये करना है, एक काम की तरह ना कीजिए। उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है और इम्पोर्टेंस जताना बहुत ज़रूरी है, वरना वो टूटते रहते हैं अंदर से। कहते हैं कि कहते तो कुछ भी नहीं है, सोचते रहते हैं कि हमारा बेटा या हमारी बेटी आएगी, हमें बहुत कुछ बताएगी, सारे दिन के बारे में बहुत कुछ समझाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कभी कभी नज़रअंदाज कर जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से नहीं पर हो जाता है हमसे। सो कहना था कि ज़िंदगी को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके में खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। आपका इम्पोर्टेंस सभी जगह बना के रखिए, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी उतार चढ़ाव होते हैं जिनसे हमें गुजर कर उस पार जाना होता है, और उस पार तक पहुंचने के लिए आप लोगों का साथ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप लोग नहीं सुनेंगे मेरे प्यार के दस्तावेज़ में जब बातें करने आती हूँ तो क्या होगा। हाँ हाँ हाँ, मैं ज़िंदगी की बहुत सारी बातें करती हूँ, आप लोग से रूबरू होती हूँ, यही तो मेरा काम है। मैं हूँ आरजे अदिति भारत एफएम के लिए। सुनते रहिएगा हमेशा हर शनिवार 10 से 11 के बीच प्यार के दस्तावेज़। ए खुदा उसके साथ रख थोड़ा पास रख, ए खुदा उसके साथ रख थोड़ा पास रख, उसकी खुशी के लिए तेरे पास आया हूँ, मेरी दुआ अब तेरे कदमों में रख, मानता हूँ भूल गया था मैं लेकिन अब वापस आया हूँ, तो निराश न रख।

गुड मॉर्निंग सभी का। मैं हूँ आरजे अदिति, आप लोगों से रूबरू होने के लिए आती हूँ प्यार के दस्तावेज सजाकर। आप भारत FM में सुन रहे हैं आरजे अदिति को, जो कि हमेशा आती है हर शनिवार 10 से 11 के बीच। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, भूलिएगा नहीं, क्योंकि आरजे अदिति को सुनने का जो आप समय देते हैं उसके लिए आरजे अदिति शुक्रिया कहना चाहती है। और कहना चाहती है कि वक्त ही शाख को तोड़ लाने का हुनर रखते हैं, वक्त ही शाख को तोड़ लाने का हुनर रखते हैं, ऐ जिंदगी हम गम में भी मुस्कुराने का हुनर रखते हैं। गम में जो इंसान मुस्कुरा ले तो वो तो ज़िंदगी जी गया। सारी चीज़ों को मेहनत से अपने आसपास सजा कर रखने का जो हुनर सीख ले वो तो ज़िंदगी जी गया। जी हाँ जी हाँ, आज हम बातें कर रहे हैं ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी के उन पहलुओं के बारे में जिन्हें हम अछूता सा रख देते हैं या छू कर भी हम कह नहीं पाते, रिकग्नाइज नहीं कर पाते। लेकिन कहना था कि ज़िंदगी मेरी खामोशी को मेरी कमज़ोरी ना समझना, मेरी खामोशी को मेरी कमज़ोरी ना समझना। फ़र्क नहीं कोई समझे हमें अच्छा या बुरा, फ़र्क नहीं कोई समझे हमें अच्छा या बुरा, हम सिर्फ अल्लाह को राज़ी की फ़िक्र रखते हैं, अल्लाह को राज़ी की फ़िक्र रखते हैं। यस, हमारे जो स्पिरिचुअल पावर हैं उन्हें हम हमेशा याद करते रहते हैं। लहजा ये ना भूलें कि हमारे आसपास हमारे स्पिरिचुअल पावर नहीं है, हमें वो अपने हाथों से प्रोटेक्टेड करके रखते हैं और बताते हैं कि जाओ कहीं भी नहीं, तू अपने घर वालों की आस है, उनकी उम्मीदों की सांस है, इनको यूं ही नहीं ज़ाया करना, इनको यूं ही नहीं ज़ाया करना, तुझे अपनी सफलता के लिए लड़ना है। हाँ, लड़ते लड़ते हमें बहुत सारी चीज़ें करना है, क्योंकि क्योंकि क्योंकि हमें ज़िंदगी में बहुत सारे काम करते रहना है और जीना है। ज़िंदगी को हम अलविदा तो नहीं कह सकते, ना ही उसके साथ बेतुकी सी बातें कर सकते हैं। मुश्किलों से तुझे लड़ना है, जीत तो हासिल करना है। क्या हुआ अगर तू अकेला है, फिर भी तो मुश्किलों का विजेता है। बस एक साज बनकर

जीना है। किसी की ज़िंदगी में बहुत सारे बातें करनी है, साज बनकर उसकी ज़िंदगी में जीना है। कहना था यही कि मुझे सुनते रहिए और समझते रहिए। ज़िंदगी के फैसले हम अकेले नहीं कर पाते हैं और प्यार के दस्तावेज हम अकेले नहीं सुन पाते। आरजे अदिति को बहुत आप लोग जो सुनते हैं वो आरजे अदिति बहुत शुक्रगुजार है इस बात के लिए और सुनते भी रहिएगा। कभी ना कभी आप लोगों से मिलने का जो उम्मीद है वो हमेशा रहेगा। तू ना कर सकता है ये विश्वास है, तेरे अपनों को मुझसे आस है, मत थक अब मेरे शेर, मंजिल भी तो अब पास है, मंजिल भी पास है। हमेशा सोचिए मंजिल पास ही है। मैंने भी कुछ चीज़ें ऐसी शुरुआत की है जिनके जिनका मुझे मंजिल का कुछ पता अता पता नहीं है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि मेरे आसपास के जो मेरे फ्रेंड्स संगी साथी हैं जो मेरे पास रहते हैं उन्हें जो वो जो हम मुझे मोटिवेट करते हैं उनकी वजह से मैं यहाँ पे यहाँ तक पहुँची हूँ। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है मोटिवेटेड रहना, क्योंकि क्योंकि उसके बिना आप अधूरे से हो। सपना बड़ा है संघर्ष भी बड़ा होगा, जीतेगा वही जो मैदान में खड़ा होगा। ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है। अगर आप मैदान छोड़ के भाग खड़े होगे तो आपके सपनों का क्या होगा, आपकी उम्मीदों का क्या होगा, आपके वेंचर्स का क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें लेकर हम शुरुआत तो कर देते हैं लेकिन हमेशा सफल नहीं हो पाते। और सफल होने के लिए, कामयाब होने के लिए, मंजिल तक पहुँचने के लिए कई छोटी छोटी रास्तों से गुजरना होता है। उन छोटे छोटे रास्तों को हमें समझ कर पार करना होता है। और यही तो बात है कि जो ज़िंदगी हमें सिखा जाती है कि बस मेरे साथ बने रहो। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी खामोशी को मेरी कमज़ोरी ना समझना। मिलती हो थोड़ी ही देर बाद, आरजे अदिति को सुनते रहिए, यूं ही प्यार के दस्तावेज़ में वापस आ रही हूँ।

गुड मॉर्निंग सभी को। वंस अगेन हमारे नए पुराने दोस्त जो जुड़ रहे हैं प्यार के दस्तावेज़ में, सुन रहे हैं आरजे अदिति को। शुक्रिया दोस्तों मुझे यूं ही सुनने के लिए। मैं कभी थकूंगी नहीं आप लोगों के लिए शुक्रिया कहते कहते, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग मुझे मोटिवेट नहीं करोगे तो मेरे लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप लोगों से रूबरू होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो कहना था कि क्या हुआ मुसीबत को देखकर डर गया, क्या हुआ मुसीबत को देखकर तू डर गया। तुझे इन सब से जीत जाना है, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, याद रख जीत वही जो नहीं डरा। जीतता वही है जो नहीं डरता है। मिलेगी राह में कोई सारी मुश्किलें, मिलेगी राह में कई सारी मुश्किलें, इनको तोड़कर आगे बढ़ना है तुझे। माँ बाप का सिर झुकने मत देना, देखना एक दिन तुझे वही सब मिलेगा जो चाहा है तूने, जो चाहा है तूने। ये सब मोटिवेशनल थॉट्स एंड कोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे लिए, क्योंकि हमें मोटिवेट करके, हमें खुद ही को मोटिवेट करके रखना होता है। क्योंकि मोटिवेशन बिना तो वैसे ही, जैसे मैं कह रही हूँ, कि जल मल मछली टाइप्स हो जाता है। हाँ, हम अपने बहुत सारी चीज़ें लेकर जब हम चलते हैं परिवार में या फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो नए सारे वेंचर्स स्टार्ट करते हैं, उन सब में मोटिवेटेड रहना भी तो बहुत ज़रूरी है, वरना कैसे जिएंगे हम सब, हम कैसे बनाएंगे। चाहते कुछ करने की, गिरने की ज़मीन पर, फिर से आसमान छूने की, देखे हैं जो ख्वाब इन आँखों ने उन्हें सच करने की। नहीं सोचना इसके अलावा, ज़िंदगी अब हंसी बनाना है, अपने मेहनत के जज्बे को अब फुल टाइम अपनाना है, अब फुल टाइम अपनाना है। जी, अपनी मेहनत फुल टाइम रखना है, क्योंकि एक ना एक दिन ये बहुत बड़ा बनेगा। आपका ख्वाब जो है आप देख रहे हो, छोटी छोटा सही ख्वाब सही, लेकिन एक दिन बहुत बड़ा बनेगा। ज़िंदगी के मायने बदलते रहेंगे और ज़िंदगी में आप आगे बढ़ते रहोगे, ज़िंदगी जीना सीखते रहेंगे। और कहना था कि आरजे अदिति को भूलना नहीं है, क्योंकि 10 से 11 के बीच प्यार के दस्तावेज सजाकर जो लेके आती है और सारी चीज़ें छोड़कर आप लोगों से बात करने के लिए आती है। सारे पिछड़े रिकॉर्ड तोड़ मुझे आकाश में उड़ जाना है, लोग चाहे कितना भी दबाएं, मुझे मेहनत की ताकत से मुझे उठना है। और जब हम मेहनत करते हैं कोई ना कोई तो रंग लाता ही है। कहते हैं ना कि मिलेंगे हम सब एक दिन, क्योंकि आकाश चीर उस पार जाना है, पर्वत तोड़ उस पार जाना है, और अपने सपनों को साकार करना है। साकार करना बहुत ज़रूरी है, वरना अगला सपना देखने की हिम्मत भी तो नहीं कर पाएंगे। टूटते टूटते कितनी ही हिम्मत कर पाएंगे हम, ज़्यादा तो नहीं ना। हम उन सपनों को फिर से जीने की कोशिश करते हैं जिनमें हमारे चाहत, हमारे सपने, हमारे चीज़ें बहुत मायने रखती है। तो मिलती हूँ मैं थोड़ी ही देर बाद, आप लोग जाइएगा कहीं नहीं। घड़ी को देखो मत, बस वह करो जो घड़ी करती है, बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप बिल्कुल भी समय ना देखें कि आरजे अदिति कब तक है, लेकिन आपको बता दूँ कि हम धीरे धीरे प्यार के दस्तावेज़ के अंतिम पड़ाव की तरफ हम पहुंच रहे हैं। बस आप घड़ी मत देखो, मैं यही हूँ। ना तकलीफ़ है ना संघर्ष है, तो क्या खाक मज़ा है जीने में। अगर तकलीफ़ और संघर्ष ना हो तो क्या खाक है मज़ा जीने में। जब आप लोग रेडियो ऑफ़ करेंगे और सोचेंगे कि आरजे अदिति फिर से कब आएगी, तो यही तो सिलसिला चलाना है, क्योंकि आपको हमसे ना, हमें आपसे दूर जाना है। हाँ, खुद ही को बहुत सारी बातें कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे साथ हो, मुझे ऐसा लग रहा है मैं आप लोगों के सामने बैठ के बातें कर रही हूँ। तो यही ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है कि ज़िंदगी को जिए जाओ किसी भी हाल में, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है जीने के अलावा और खुश रहने के अलावा। आप अगर दुखी बने रहोगे तो आप खुश नहीं रह पाओगे ना, खुश रहना भी तो बहुत ज़रूरी है। और खुश रहने के लिए आप लोगों को सुनना पड़ेगा प्यार के दस्तावेज़ आरजे अदिति के साथ। कोई ना मैं अब भी आती हूँ, जाइएगा कहीं नहीं।

वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन। हमारे नए पुराने दोस्त जुड़ रहे हैं, प्यार के दस्तावेज सुन रहे हैं आरजे अदिति के साथ, और बने रहने के लिए बहुत सारा थैंक यू। कहना था कि वक्त तुम्हारा है, सपने भी तुम्हारे हैं, पूरे भी तुम्ही को करने हैं। माना डगर थोड़ी मुश्किल है, मगर नामुमकिन तो नहीं। करना यही है, समय यही है, चाहे तो सोना बना दो या सोने में बिता दो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है ना, चाहे तो सोना बना दो या सोने में बिता दो। यस, हमारी ज़िंदगी के जो सपने हैं वो हम ही पूरा कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। मेहनत कर मंजिल भी मिलेगी, मुकाम भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा। साधनों की कमी कारण होना मत उदास भी। कभी इरादे आगे नेक हो तो बरकत ज़रूर होगी। अगर इरादे नेक होंगे, अगर इरादों में आपको पता है कि आपको क्या हासिल करना है, आपका लक्ष्य आपको पता है, तो ज़रूर सफलता मिलती है। सफल होने में बहुत अंतर तो ज़रूर है, लेकिन ऐसा नामुमकिन तो नहीं है कि आप सफल नहीं हो पाओगे। बहुत ज़रूरी है दोस्तों का साथ। और वही कहना था कि आप सबसे ध्यान रखिए अपना, क्योंकि आपके ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुरझाए से रहेंगे और आप कुछ ना कर पाएंगे तो फिर आप सफलता कैसे पाएंगे। अपने आप का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका ध्यान आपके अलावा कोई नहीं रखेगा, रख भी नहीं पाते हैं, चाह कर भी नहीं रख पाते हैं। ये नहीं कि आपको वो प्यार नहीं करते, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है, और उन गलतियों की सज़ा आप अपने आप को दे बैठते हो। पर ऐसा ना करो, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने चीज़ों में, आप अपनी बातों में सब कुछ पता हो कि आपको करना क्या है, मंजिल का, लक्ष्य का सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि कहाँ तक आपका लक्ष्य है और क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में। तो ज़िंदगी तो तभी तो साथ दे पाएगी ना, जब उसे पता होगा कि आप किस लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। जैसे कि मेरा लक्ष्य है, या मेरी तमन्ना होती है कि आप लोगों से मिलूं मैं और आप लोगों से ढेर सारी बातें करूं, इसी तरह आप लोगों की भी कुछ ना कुछ ख्वाहिशें होती होगी कि हाँ, आरजे अदिति को सुनते हैं प्यार के दस्तावेज। अभी 10 बज रहा है और ज़रूर वो बातें करने के लिए आ ही रही होगी। और कहना था कि थैंक यू वेरी मच आप लोग मुझे सुनते हैं। आप लोगों को पता ही है मैं कहाँ कहाँ मिल जाऊँगी। हब ऑपर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, हर जगह पे मैं मौजूद हूँ आजकल। सो मुझे सुनते रहिएगा, और मेरा आप लोगों से रूबरू होना बहुत ज़रूरी होता है, तो ट्यून इन करते रहिएगा। मिलती हूँ, आप लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा, और ज़िंदगी की बातें मैं सजा कर तो लाती हूँ। प्यार के दस्तावेज़ में बहुत सारी बातें कहनी होती हैं और आप लोग सुनते भी हैं, और ये कहने सुनने का जो सिलसिला है वो बस जारी रखना है। क्योंकि फ्राइडे 7 PM टू 8 PM में बंगाली शो आती हूँ, और बंगाली फ्रेंड्स लोगों से मुझे बातें करनी होती हैं और बातें बहुत सारी करती भी हूँ। तो सुनते रहिएगा फ्राइडे को और सैटरडे को, सैटरडे 10 AM में प्यार के दस्तावेज़ में बहुत सारी ढेर सारी बातें करने के लिए आती हूँ। मिलते हैं अगले सैटरडे, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखें, और आसपास जो भी हमारे शोज़ चल रहे हैं, जो भी कुछ बातें हो रही हैं, वो सब सुनते रहिए, उन्हें अटेंड करते रहिए। और मिलती हूँ मैं आपको बहुत जल्द प्यार के दस्तावेज़ में। बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू।

0: ये है भारत एफएम
1: बजेगा भारत।
2: प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवां मोबाइल।

0: मेरा भारत एफएम।
1: इदम मम भारत एफएम।
2: दिस इज माय भारत एफएम।
3: हे आहे माझे भारत एफएम।
4: ये है मेरा भारत एफएम।

बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या

पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहूं तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की।

0: भारत एफएम।
1: इदम मम भारत एफएम।
2: दिस इज माय भारत एफएम।
3: हे आहे माझे भारत एफएम।
4: ये है मेरा भारत एफएम।

0: नमस्ते और आदाब। भारत एफएम के इस बेहद खास प्रोग्राम फरमाइश में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल। मैं हूं आपका हम सफ़र अमिताभ रतूरी और आज का हमारा ये प्रोग्राम एक ऐसे लफ्ज़ के इर्द गिर्द बुना गया है जो छोटा तो बहुत है लेकिन इसकी गहराई नापना नामुमकिन है। ये लफ्ज़ है तू। तू कभी खुदा की बंदगी है और कभी महबूब की इबादत, कभी खुद की परछाई है तो कभी पूरी इंसानियत का आईना। आज हम आपको तू के उन चुनिंदा नगमों से महफिल सजाएंगे जिन्होंने दशकों से हमारे जज्बातों को आवाज़ दी है और आवाज़ को और बुलंद करने के लिए हैं मेरे साथ टोरंटो से मोहन अत्रिया साहब। मोहन, वेलकम टू द प्रोग्राम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम।
1: आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम अमिताभ, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन। मच ऑब्लाइज्ड एंड वार्म हेलो टू ऑल योर लिसनर्स। इट्स वेरी गुड टू कम बैक एंड आई हैव बीन extremely busy with a lot of other things that, you know, a lot of changes in my life. So have had to do a lot of things to sort of prepare for that. And so I had deprioritized this, but not out of choice, but out of necessity. But I'm very, very glad to be back. And the first song was suggested by my good friend, चंपा भारद्वाज फ्रॉम मुंबई। यस अमिताभ।
0: नहीं, मैं कह रहा था कि चंपा जो है रेगुलरली प्रोग्राम सुनती हैं बड़े।
1: हाँ,
0: यू नो एवरी टाइम शी सेंड्स अ सॉन्ग आई एम लाइक आई हैव टू प्ले दिस। तो
1: या शी हैज दिस फैंटास्टिक एबिलिटी टू गेट इनटू द थीम। You know, it's not that simple and straightforward because see, I've interacted with her one-on-one and hum log thoda research karte hain, you know, I don't know hum log, but I do. Main thoda sa research karta hun, internet pe jata hun aur dekhta hun ki kaun sa gana bajaye, phir chunta hun, phir sunta hun, phir koi theme man mein rakhta hun. Lekin Champa jo hai, usko ek theme bata do to wo 10 minute mein you know, 15 गाने निकालेगी। और नॉट जस्ट द सॉन्ग्स, देर आर मेनी पीपल हु आर वेरी वेरी नॉलेजेबल एंड यू नो, उनको आप कह दो कि तू से शुरू होना है तो 15 सॉन्ग 20 सॉन्ग्स आप वो गिना देंगे आपको। लेकिन
0: सुधीर मटानी जैसे और मन्नन रावल और चंदन, इतनी सारी फरमाइशें हैं आज की, क्या बताया जाए।
1: ऑल दीज पीपल can list the songs, but if you tell Champa or if you tell Sudhir saab ki ye lekin aisa hona chahiye, is theme mein fit hona chahiye, is kahani ke sath jo main soch raha hu uske liye ek song suggest kare, to these are two people I can completely rely on for that. And I am very glad that Sudhir saab has requested some songs, and my apologies to him for being away from the show for a long time, but this has been good. So it was a great opening number, Amitabh. So number 2 mein kya rakha hai aapne?
0: To Mohan, pehli sequence jo hai songs ka, 7-8 gaano ka, wo hai Wafa aur Intezaar ka theme, loyalty and longingness ka theme. Aur ये फरमाइश अनीता की आई थी, तो अब देखिए क्या है कि ऑब्लिगेशन सा बन जाता है इतने सालों के बाद कि तो ये गीत नहीं, अब डॉग हाउस तो है नहीं अब हमारे घर में, तो
1: टूल शेड तो होगा।
0: तो फिल्म थी मसान, गायक है स्वानंद किरकिरे, म्यूजिक इंडियन ओशन का है और लिरिक्स जो है वो वरुण ग्रोवर के थे। वरुण ग्रोवर बाय द वे, ये वही वरुण ग्रोवर हैं जो कॉमेडी भी करते हैं और ये काफी काफी अच्छी, अभी कैलिफोर्निया में उनको देखा हमने, काफी मजेदार कॉमेडी करते हैं, पर ये गाना कॉमेडी में तो नहीं है, काफी सीरियस, काफी सीरियस गीत है। चलिए एंजॉय,
1: चलिए सुनते, थैंक यू।

0: अब तो हम फ्रेंड हो गए हैं ना।
1: तो दोस्तों, ये तो रहा मसान का तू किसी रेल से गुजरती है। वफा और इंतजार का थीम है और गाने तू से शुरू होने चाहिए कि राहें तन्हा हैं और दिल बेकरार है, सिर्फ तेरा ही मुझे इंतजार है। तू कहाँ है ये बता दे हम सफर, तू कहाँ है ये बता दे हम सफर, मेरी हर सांस पे तुझ पे निसार है। तो मोहन, बहुत ही कड़क सा गीत है अगला वाला।
2: हाँ, कड़क सा गीत है, बट अ सॉन्ग जिसका जो पेथोस है ना कि आई डोंट नो वेयर यू आर, प्लीज शो योरसेल्फ। ये जो फीलिंग है, ये जज्बात जो है वो बहुत एस डी बर्मन का जो म्यूजिक है इस गाने में, दैट हैज lent that pathos to this song. And Hasrat Jaipuri ke bol, obviously of very, very high quality. And Rafi saab ka gana hai. And this was a fantastic movie, Amitabh. If you remember, Tere Ghar ke saamne had Devanand and Nutan. I've seen this movie many, many, many times. And,
1: excellent movie.
2: Yeah. Excellent film. Yeah. You know, in all respects, both light as well as, you know, the depths of romance. Bahut acha picture tha. And Rafi saab and S.D. Barman and Hasrat Jaipuri combined to produce a fantastic number in Tu Kahan Ye Bata. Let's listen.
1: Mohan, ye Sudhir Matani ki farmaish thi.
2: ओ मैं बता दूंगा एट द एंड।
1: ओके सॉरी,
2: नो आई
1: लेट्स कंटिन्यू।
2: नो आई

0: तू से शुरू होने वाले गाने, यानी कि आपसे शुरू होने वाले गाने, और मेरे साथ हैं मोहन अत्रेय साहब. मोहन, लवली नंबर. चलिए अगले पायदान पे क्या है.
1: व्हाट अ आई मीन व्हाट कंपोजिशन, द रिचनेस ऑफ द कंपोजिशन इज जस्ट यू नो हॉन्टिंग हॉन्टिंग अमिताभ. बहुत अच्छा गाना है. एंड द नेक्स्ट सॉन्ग आई नोटिस दैट हैज बीन रिक्वेस्टेड बाय 3 पीपल. Shahid Saab and Raj Karnik Saab and Prakash Saab have all requested this song, which is an absolutely beautiful number, both written and scored by Ravindra Jain for the movie Chitchor, you know. And Ravindra Jain had a great fondness for the Raag Pilu, and this is also a song set to Raag Pilu. Sung by Hemlata and Yesudas. Those were the days when, you know, there was an era of simplicity in movies, and Amol Palekar did a great job of bringing simplicity to the Hindi cinema. And this was a movie he acted with Zareena Wahab. It was, you know, one of those soft, gentle movies that everybody loves. And this was a very popular song those days, Amitabh, 1976. I had just become a freshman in college, and it was just very, very nice. Tujho mere sur mein.
0: मैं यही सोच रहा था कि शाहिद शेख दिल्ली में, प्रकाश भाई सिंसिनेटी में, ये दोनों तो दे आर वेरी गुड सिंगर्स. सो यू नो खुद भी दोनों बहुत बढ़िया गाते हैं. अभी शाहिद शाहिद साहब तो अभी कश्मीर में है, हम लोग थे साथ में, तो उन्होंने क्या महफिल सजाई. पर मैंने सोचा एक कार्निक साहब ने क्यों इसको सेलेक्ट किया. ओ फिर मुझे याद आया कि अच्छा, जरूर कोई राग बेस्ड गीत है, तब कार्निक ने सेलेक्ट किया है. तो
1: एंड ही कैन कंफर्म बाय व्हाट्सएप और समथिंग दैट दिस इज बेस्ड ऑन राग पिलू, व्हिच आई रिमेंबर्ड फ्रॉम माय कॉलेज डेज, एंड होपफुली आई एम राइट. एंड Karnik Saab can confirm if he wishes.
0: Chahiye. Right? Sunte hain Yesudas aur Hemlata ko.
1: Hemlata ko.

0: दोस्तों, सादगी में छिपे गहरे प्यार का इजहार जो होता है वो अलग ही होता है। कभी कभी हम लोग फिक्र करते हैं काफ़ी, एंड फिक्र, अब शब्द बोल दिया है तो उसका जिक्र भी करना पड़ेगा कि
1: जी
0: तू साथ है तो मंजिल की फिक्र नहीं, तू साथ है तो
1: अच्छा
0: मंजिल की फिक्र नहीं, तेरे बिना मेरी कहीं जिक्र नहीं।
1: वाह,
0: तो ऐसा ही कुछ भाव है अगले गीत में।
1: अगले गीत में और चुना है आरजे डी जूची. आरजे डी इज व्हेन शी पिक सॉन्ग्स ऑफ वेरी वेरी हाई क्वालिटी एंड कैलिबर.
0: थोड़े हटके होते
1: शी
0: हैं,
1: हाँ हाँ
0: जरा हटके जरा बच्चे
1: जरा
0: का गीत
1: हटके,
0: है।
1: या थोड़ा सा स्लाइटली ऑफ द बीटन ट्रैक, एंड दैट इज हर स्पेशल एबिलिटी एंड स्पेशल ग्रेटनेस. बट सिंस आई एम अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स, आई विल से दिस अमिताभ, इफ शी इज लिसनिंग, आई जस्ट वॉन्टेड टू इन्फॉर्म हर वेल इन एडवांस कि आई एम ट्रेवलिंग टू सिंगापुर टू जस्ट बीट हर अप. ओके, शी हैज़न्ट कॉल्ड मी
0: वेट वेट,
1: इन अ
0: हैवेंट
1: वेरी
0: आई
1: लॉन्ग टाइम.
0: नो, बट हैवेंट यू ऑलरेडी मेट हर? तुम आप तो मिल भी चुके हैं उनसे।
1: नहीं, बिल्कुल मिले हैं, उसके बाद हजार बार बात भी कर चुके हैं, लेकिन बहुत दिन हो गए. एंड
0: हाँ,
1: शी ओन्ड मी अ कॉल.
0: आप भी तो भारत
1: हाँ,
0: एफएम से गायब थे 6 महीने तक, तो आप क्यों, यू
1: ये भी
0: कांट
1: बात सही है. नो
0: कंप्लेन।
1: नो आई कैन नॉट कंप्लेन, आई कैन नॉट कंप्लेन अबाउट द शो, बट शी ओज मी अ कॉल, एंड इफ शी इज लिसनिंग शी बेटर कॉल मी, अदरवाइज आई डोंट माइंड स्पेंडिंग मनी टू गो एंड बीट हर अप.
0: अच्छा,
1: ओके सो
0: हियर्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट।
1: हाँ जी
0: 7 से 9 तक हमारा फरमाइश प्रोग्राम होता है, फिर 10 बजे
1: जी
0: रीब्रॉडकास्ट होता है इसी प्रोग्राम
1: जी
0: का, और
1: जी
0: 9 से 10 तक डी का प्रोग्राम होता है हम सफ़र, तो और
1: हाँ
0: दैट्स ऑलमोस्ट अ डेली स्केड्यूल। तो सब श्रोताओं से यही कहना चाहूँगा कि अभी ट्यून इन है तो 9 बजे भी ट्यून इन रहिए, उनका प्रोग्राम सुनिए, बड़े मज़ेदार प्रोग्राम करती हैं वो।
1: बहुत मजेदार प्रोग्राम होता है उनका. करेक्ट, एब्सोल्युटली,
0: चलिए उनका गीत सुने फिर।
1: फिर एब्सोल्युटली, फिर और क्या चाहिए सर.

0: तो दोस्तों ये तो रहा मेरा साया साथ होगा फ्रॉम द मूवी मेरा साया। अगले मोड़ पर एक बहुत ही खूबसूरत नगमा है कि जमीन से आसमान तक तुझे ढूंढता हूँ, जमीन से आसमान तक तुझे ढूंढता हूँ,
1: ढूंढता हूँ,
0: हर धड़कन में तेरी सदा ढूंढता हूँ।
1: अरे वाह,
0: तू छुपी है कहाँ, तू छुपी है कहाँ इन नजारों के पीछे, तू छुपी है कहाँ इन नजारों के पीछे, मैं खुद में भी अब तेरा पता ढूंढता हूँ। मोहन, यू हैव टू इंट्रोड्यूस दिस लवली लवली नंबर बाय आशा एंड मन्ना डे।
1: आशा एंड मन्ना डे एंड लुक एट हु क्रिएटेड द सॉन्ग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज भरत व्यासस लिरिक्स, यू नो, टॉप नॉच लिरिक्स राइटर, आई थिंक स्लाइटली अंडर रेटेड इन द इंडस्ट्री, absolutely mesmerizing poetry he used to write. He also wrote a lot of non-filmy poetry, which was also of a very, very high quality. So you had Bharat Vyas and the music director of music directors, C. Ramchandra, was an absolute master of the classical genre of Bollywood songs, top class material in his songs, and both Manna Day and Asha Bhosle gave their life to this song. It was a song of the nature of this song was such that it demanded a lot from the singers, and this was a hallmark of all C. Ramchandra songs anyway. Not very easy to sing. But and that is probably the reason why he picked Manna Day and Asha Bhosle to sing it. And boy, did they do justice to this number. Tu Chupi Hai Kahan.